हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: अमेरिका जा ईरान जे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला। ॾखण ऐं विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पुलनि, बिजली घरनि, सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी मिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो। हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत 8 ॼणा जूं तस्वीरूं बि जारी। केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी मीडिया मूजिबि अमरीका मेरी टाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो। जासिक बेट ते हज़ारे शहरनि खे पाणीअ जी फरामी मुअत्तल थी वई। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रेक्स खे बि तबाह कयो वियो। अमरीकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए गंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई। अमरीकी सटका मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे।
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग।

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मुअसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
7: yeah!

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
3: हर माह मुनाफा आमदनी में इजाफा, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
5: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
4: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
5: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
4: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
5: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
4: इस्तेमाल कीअं कजे?
5: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 AM. This time check is brought to you by
3: Al Kasabi, Raftar Bi, Bank Al Abib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर
5: हवाई अड्डे का पासो कहे बने। उर्दन में ईरानी हमले में बा अमेरिकी अहलकार।

अमेरिका जा ईरान जे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला रखण विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पोलनि, बिजली घरनि, सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी मिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो। हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत 8 ॼणनि जूं तस्वीरूं बि जारी, केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी मीडिया मुजाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो। जासक बेट ते हज़ारे शहरनि खे पाणी जी फराहमी मुअत्तल थी वई। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रैक्स खे बि तबाह कयो वियो। अमेरिकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 AM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हम कहां के सच्चे थे, जीते थे जिंदगी के धोखे में, हर किसी से लड़ते थे, हम कहां के सच्चे थे।
1: काहे मिलके बिछड़े थे, आंसू में डूबे थे।
2: आंखों से निकला हुआ हर पानी आंसू नहीं होता।

0: कैसा महसूस हो रहा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना मुसलसल अदा करते रहेंगे अस्करी बैंक।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

अमेरिका वायदन की बार बार भंजकड़ी कई साबित थो तो अमेरिकी सदर के सही की का भी हैसियत ना है। अमेरिका से भरोसा नथा करे लाजमी हिस्सों आन अमेरिका जंग पैंजी जिलत जो दग इख्तियार करण चाहे तो असा मुकम्मल तौर तैयार आयो। ईरानी कौम अड़ो सबक सेखारींदी जो अमेरिका सारी जिंदगी विसारे न सकंदो। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई जो ईरानी कौम के नाले से पैगाम संदस चवण ईरानी कौम शहीद रहबर के अलविदा चई नई तारीख रकम कर छी। मौजूदा मरहले में कौमी इतिहाद ए यकजहती बरकरार रखण वक्त की अहम जरूरत है। इख्तिलाफन मार्जर ए चार जखटल कमांड मूजिब सते में ब अमेरिकी अहलकार तिबी इमदाद अस्पताल में डिस्चार्ज किया। वारसन के इतलाह डेण का माजी वाण जाहिर कई वी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ वे फौजी ऑपरेशन से गौर। आलमी खबरू इदारे की रिपोर्ट मूजिब अमेरिकी रिफ्यूलिंग जहाज स्ट्राइल उमाणा पाया वन ईंदड़ कुछ डी में जंग शिद्दत इख्तियार कर सके थी। ट्रंप बिजली घर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के निशानों बनाने जो इरादों रखे तो ईरान खिलाफ कार्रवाई जो हतमी फैसलो अजा ना थो। अमेरिका जो मकसद ईरान से दबाव बधाए हरमूज लंघ खोलण है। टंडो अलहार में मासूम पुट पीओ हथा मुबैना तौर छुरी जा वार कर कतुल। मदीना कॉलोनी में चयन वरियन के फयाज के छुरी जा वार कर कतुल किया वो। बालड़ी की माँ इल्जाम भरे तो कुछ अग मुड़स से नाराज थी अमर के घर रही हुयस। मुड़स रात देर से घर अची पुट के छुरी जा वार कर कतुल कर पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार कर वरतो। सखर में हथियारबंद की फायरिंग एक जनो कतुल। डेंटर पेंटर कॉलोनी में हथियारबंद फजल रहमान के गोलियों हणी कतुल कर वाया। पुलिस को चवण है तो वाकई जो कारण मालूम ना थी सको जांच कई पी वे। रावती के कचे में पुलिस जो रात देर से ऑपरेशन ड्रोन किरण सबब औरत ए निंगरी मारी वो। गोठ छलोशर में डोहारन खिलाफ पुलिस ऑपरेशन दौरान मुबैना तौर ड्रोन एक घर के मथा किरो। ड्रोन किरण सबब सूमरी ए निंगरी रिहाना शहर मारी वो। औरत लतीफा शहर ए निंगरी शबाना जख्मी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
1: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
0: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
1: बिल्कुल अदा, कुदरती जज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडियम जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश खां पोइ छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: रुगो मुतासिर हंद ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध। जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
0: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
2: शाह लतीफ़ का सूफ़ी ठिकाना,
3: वादीए मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: चाहे सिंधी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गही मारू तू कर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं.
2: It's 11:15. This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. Sindh ki ho to awaaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Ki awaaz.

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 88 FM 88
1: सिंध की आवाज,
0: हक सच जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी 1.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Jildi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye.
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जुड़ियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप। गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से उल्टियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो प्यार GFM 91.6 सुन जो आवाज।

जी, जो मैं आज का एक सवाल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, तो आपने उसका जवाब मुझे बताना है कि यार उसका क्या। जो मेरा सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि आप इंसान कितने अंता है, खाली पेट पे इंसान किस कौन जीतने वाला है, कौन मेरे सवाल के जवाब के साथ।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: It's 11:45 AM. This time chat is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अब
3: सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों जहाँ गर्मी दानों से हिप।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

88 और कौन कौन मौजूद है हमारे साथ जो मौजूद हैं देखते हैं अभी। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यार जो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं बहुत सारे। रिहाना खान बकर कहती हैं कि रिहाना खान फ्रॉम बकर, बकर से आप मुझे ज्वाइन कर रही हैं। तो जी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे ज्वाइन किया है। ऐसे ही आपने मेरे साथ रहना है हमेशा, ओनली ओनली ऑन संडे सुबह 11 से 12 बजे तक रहता है, जैसा कि आपका मेरा साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए।

0: और न्यूज ब्रेक से जैसे ही वापस आऊंगी तो वापस आके मैं कलेक्ट करूंगी आप लोगों से अपने सवाल का जवाब। तो जी रेडी रहेगा। सवाल जिसने मेरा नहीं सुना, जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद अभी तक मेरा सवाल नहीं सुन पाया वो, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन किया करें। और सवाल मेरा ये है आप लोगों को से कि आप लोगों ने बताना है कि भाई वो खाली पेट पे इंसान कितने अंडे खा, तो जवाब आप लोगों से मैं इंतजार में हूँ। आप लोग मुझे जवाब दें और अपने पसंद और आपको पता चल सके कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर चलते हैं हम एक न्यूज ब्रेक के जाने, वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बातें। रहिएगा मेरे साथ, सुनते हैं न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: प्लस अकाउंट भरोसा।
4: अब न्यूज।
5: अब्बास ते धमाका, अमेरिकी फौज जे सेंट्रल कमांड जो चवण है त अठी रात में कयल हमला मुकमिल कया विया आहिनि। हमलनि में ईरान

में फिजाई फौजी हंधनि बहरी सलाहियतनि मिज़ाइल ऐं ड्रोन मर्कज़नि खे निशानो बणायो। अमेरिका सॼी दुनिया में मौजूद पंहिंजे शहरनि लाइ सफ़री अलर्टो विच ओभर जी सूरत हाल सबबि शहरी गैर मामूलियत जी हिदायत।

0: अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान ते हमला। ईरानी पाज़ारनि इनकलाब जो चवण आहे त अमेरिकी फ़ौजी हदफ़नि खे निशानो बणायो आहे। ऑपरेशन लाइटिंग जी 16 मरहले में कुवैत में बि अमेरिकी फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो। अलदेरी कैम्प में हिकु हथियारनि जे डिॿो ऐं अलियल सालिम अॾे ते पेट्रियॉट रेडार खे निशानो बणायो। हमले में फज़ाई निगरानी जे हिकु रेडार खे बि निशानो बणायो वियो।
1: वियो उर्दन ते हम फ़ौज जो वॾो नुक़सान करे विधो। अमेरिकी ऐं रूसी मीडिया जे रिपोर्ट, रूसी मीडिया चयो आहे त ईरानी अमेरिकी दिफ़ा निज़ाम पार कंदे हदफ़नि खे निशानो बणायो। न्यूयॉर्क टाइम मौजिब ईरान 17 जुलाई ते उर्दन में अमेरिकी फ़ौज ते चौथों हमिलो कयो। हमलनि में केतिरा ई फ़ौजी ज़ख़्मी थिया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स बि तबाह कया विया।

0: KTN News।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: महरान की सकाफत से गुंदा हुआ, आवाज की डोर से बंधा हुआ,
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि आप सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक आवाज थी हमारे पास खूबसूरत थी जो कि हम सुन रहे थे फैज़ अली की आवाज में एक सॉन्ग। तो जैसा कि आपने भी वो सॉन्ग सुना है और उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे साथ और कौन मौजूद थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी जो मेरा सवाल था जिसने मेरा सवाल नहीं सुना था। सवाल मेरा ये था कि आप लोगों ने मुझे बताना था कि खाली पेट पर जो है हम लोग इंसान एक कितने अंडे खा सकता है। तो किसी ने मुझे बोला कि 10 और किसी ने बोला कि यार सुबह उठ के वो नाश्ते में पहले पहले अंडे खा सकता है। तो जी आपने मुझे बताना कितने अंडे वो खा सकता है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया। और जिसने जवाब दिया है अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम नहीं बताया, तो मैं वो सॉन्ग कैसे प्ले करूंगी या आप लोगों को कैसे बता पाऊंगी कि यार जो है आपका सवाल का जवाब ठीक था कि या वो गलत है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताती चलूं कि टाइम इज ओवर, और जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ हमारे पास 30-35 मिनट्स बचे हैं और उसके अंदर हमें फरमाइश सॉन्ग भी प्ले करने होते हैं और अपने पसंद के सॉन्ग भी मुझे प्ले करने हैं। तो जो मेरा सवाल का जवाब था, सवाल मेरा यही था आप लोगों से कि आपने बताना था इंसान खाली पेट पर कितने अंडे खा सकता है। और जवाब मेरा ये था कि जवाब इसका है कि यार इंसान खाली पेट पर सिर्फ एक ही अंडा खा सकता है, तो उसके बाद तो उसका पेट खाली नहीं रहेगा ना। तो ये चीज आपने मुझे बतानी कि जब एक खाली पेट पे इंसान एक अंडा खा लेगा तो उसके बाद खाली अंडे पेट कैसे रहेगा, भले वो उसके बाद 2 खाए, 3 खाए या 10 खाए, तो उसके बाद तो वो पेट आपका खाली रहेगा ही नहीं। तो ऐसा ही ये चीज बिल्कुल। और तो आपको पता है कि यार वो जो खाली पेट पे इंसान एक अंडा खाएगा तो वो एक ही अंडा जो है वो उसका लास्ट में विनर है। तो मैं आपको बताती चलूं, जिसने मुझे ये जवाब दिया था वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज आप लोगों ने जवाब के साथ अपना फरमाइश सॉन्ग नहीं बताया तो देन मुझे खुद ही जस्ट बताना पड़ गया। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ मौजूद जो है वो कहते हैं जलोड़ी से काली शारी, कहते हैं जवाब है एक अंडा, और जी बिल्कुल एक अंडा ही, और कहते हैं कि साथ में गाना चलाना है फरजाना परवीन मंजर जो रुमाल करने के नू, और पता नहीं आपने क्या लिखा है। खैर ठीक है, हम आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यार मेरे पास एक और सॉन्ग मौजूद है, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद हम आपका फरमाइश सॉन्ग भी जरूर प्ले करेंगे। तो यहाँ पर सॉन्ग मैं प्ले करने लगी हूँ, तो सुनते हैं सॉन्ग को, एंजॉय करते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ।

0: जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक और खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसके अलावा देखते हैं कि हमारे पास कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ कहते हैं कि भाई शकर के लिए सलाम और स्वीट सना कैसी हो, शो नाइस वाइस नाइस एंड आई एम वसीम फ्रॉम पन्नू आकिल, और साथ में कहते हैं कि मुझे आपका बहुत वेट होता है प्रोग्राम का। जी थैंक यू सो मच, आपको इंतजार होता है, ऐसे ही मुझे भी इंतजार होता है कि यार संडे कब आएगा और कब आप लोगों से मेरी बातचीत दोबारा से होगी। तो ऐसे ही जैसा कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों का इंतजार कर रही होती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा लगता है कि यार कोई और भी हमारा, जब आप लोग इंतजार करते हैं तो हमारे वो दिन जो है ना, जब हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो खुशी हो रही होती है यार। ठीक है, अगर हम लोग जैसे बात करने जाए, हमारे फ्रेंड्स भी हमारा वेट कर रहे हैं, तो यही चीज एक जो है ना अच्छी लगती है। तो ऐसे ये कि और ये बताएं कि सुबह किस किस की हो गई, किस किस ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, जिसने नाश्ता नहीं किया वो मुझे अपने पसंद का सॉन्ग तो जरूर लिख के भेजे ताकि मुझे पता चल जाएगा उस बंदे ने नाश्ता नहीं किया। तो आप लोग मुझे बताएं कि किसने अभी तक नाश्ता नहीं किया, वो मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग सुने भेजें, और अपने पसंद नाश्ता करते हुए फिर वो अपने पसंद का सॉन्ग सुने, तो ये मजा ही इसमें आ जाएगा दुबाला। तो एक काम करते हैं, आप लोग मुझे नाम भेजें और यहाँ पर चलते हैं हम एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, वापस हैं, बाकी की बातें बाद में।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स डी स्किन ब्यूटी
6: जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जवाब।

तो जी जैसे कि सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मेलिटी सॉन्ग जो कि हमने सुना और यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा मेरे साथ मिलकर। तो जी और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर अभी बहुत सारे सॉन्ग मेरे पास लाइन से मौजूद हैं। तो और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भाई तो यहाँ पर एक और कोक स्टूडियो का सॉन्ग हमारे पास मौजूद है। जी वो सुनते हैं और सॉन्ग को देखते हैं वो कैसा सॉन्ग न्यू सॉन्ग है। आपको पता है कोई भी न्यू सॉन्ग होता है या कोई भी एक न्यू चीज होती है तो हमेशा मैं आप लोगों के साथ प्ले करती हूँ, आप लोगों के साथ सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार आप लोगों के साथ सुनना एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आओ बात करने में बहुत सारी बातें जमा हो जाती है जिसमें हमारे सॉन्ग भी मौजूद होते हैं कि हम लोग आपस में एक साथ वो सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तो ऐसे ही आज भी कोक स्टूडियो सीजन 9 का एक सॉन्ग है, मैं रास्ता मोमिना मोहतिसम का सॉन्ग है एंड जुनैद खान का। जुनैद खान तो फेवरेट एक्टर है ही मेरा, तो उसका सॉन्ग भी अच्छा होगा, मैंने सुना नहीं है लेकिन आपके साथ सुनते हैं। और मोमिना मोहतिसम भी बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी एक्टर्स हैं, अच्छे सिंगर हैं, तो सुनते हैं इनको। तो आइए मिलकर एक सॉन्ग सुनते हैं कोक स्टूडियो सीजन 9।

0: जैसे कि सुन रहे थे हम लोग यहाँ पर कोको स्टूडियो सीजन 9 का सॉन्ग मैं रास्ता और मैं ही हम सब मैं ही सफर जी कैसे हैं सुनने के बाद आप लोगों के जो है हालात। तो यार ये सॉन्ग मतलब इस तरह के कोई भी कोको स्टूडियो का अगर हम सॉन्ग सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही मतलब एक एक्साइटमेंट हो जाती है, या हम लोग जो है जहाँ पर बैठे होते हैं वहीं पर ही गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही शायद आपके साथ भी यही हो रहा होगा सिचुएशन में, तो मुझे नहीं बता रहे वो बात अलग है लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा यकीन। तो जी यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर छोटे शॉर्ट कमेंट पिक की तरफ जाएंगे, जैसे ही जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे रहेगा मेरे साथ, उसके बाद बाकी की लाइन बाकी हैं सॉन्ग सुनने के लिए। तो कर दिया है मैंने वेट खत्म, मतलब बस जाते ही साथ वापस आना है तो रहेगा मेरे साथ।
1: सखर सिंध का राज दुलारा शहर
2: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
1: सखर के
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
4: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
5: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
6: यार कुछ डीहन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
7: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
6: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
7: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
6: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
7: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणनि जख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
6: इस्तेमाल कीअं कजे?
7: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
8: आप सुन रहे हैं,
9: आप सुन रहे हैं
8: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी वेलकम, तो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था हम जैसे ही जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे, जी अभी भी ऐसे ही हुआ, बिल्कुल जैसे गए थे और वैसे ही वापस स्पीड में हम लोग वापस आ गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि यार यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें मौजूद हैं, और हमारे साथ यार एक हमारे प्यार से लिसनर है, वो कहते हैं कि सदाक हुसैन मीरानी साहब कहते हैं कि बचर शाह मीरानी से सरकार छोटी बाजी, मैं बीमार हो गया हूँ, तीन डॉक्टर इलाज स्टार्ट और वन हॉस्पिटल, और इस तरीके से उन्होंने कहा। और उनसे वो गुजारिश करते हैं कि यार आप लोग सारे सुनने के लिए, सर सदाकत के लिए जो है आप लोग दुआ करें कि वो हमेशा ठीक हो जाएं और हमेशा खुश रहें। ऐसे ही आप लोग की दुआ हमेशा है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हर बीमारी से आप लोग अल्लाह ताला आपको दूर रखे। तो ऐसे ही आप लोग मेरी भी दुआ करा करें और सब लोग दुआ करें सदाकत से मिलाने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भाई इतने सारे लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, आप लोगों का प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया है और होता भी है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि सुबह आप लोग उठ जाते हो तो बहुत सारी बातें जमा करते हो, आप लोग मुझे बहुत छुपाते हो। यार मैं आप लोगों से कहा था जिसने नाश्ता नहीं किया वो मुझे बताए कि जिसने नाश्ता नहीं किया वो अपने पसंद का सॉन्ग मुझे लिख के भेजे ताकि मैं वो सॉन्ग प्ले कर सकूं। इसका मतलब आप सबने नाश्ता कर लिया है ना, तो जब भी आप लोगों ने मुझे नहीं बताया कि यार किसने नाश्ता नहीं किया। और अच्छा मैं जब अभी सोच रही हूँ कि आपको मैं इतना आसान सवाल लिख के आती हूँ, आप लोग वो मुझे जवाब नहीं दे पाते, तो अगर मैं थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट कोई सवाल लेके आ जाऊँ जिसका जवाब ही आप लोगों को ना आए तो आप लोग फिर क्या करेंगे। तो इतना आसान सवाल लेके आती हूँ, आप थोड़ा सा जहन चलाया करें, और कोई मुश्किल बात नहीं है, जहन चलाएंगे दिमाग चलाएंगे तो आपका वैसे ही वो जवाब निकल के आ जाता है। तो इसके अलावा भी यही चीजें हैं कि अगर अभी शायद आप लोग सफर में है, कोई घर में सो रहा है, कोई उठ के बैठा है, तो मुझे ज्वाइन करने का आपको टाइम पता है यार कि आरजे सना के साथ हम लोगों ने बातें करने जानी है। वो हर किसी के पास थोड़ी जाती है बातें करने के लिए, हमारे पास आ रही है।

तो इसका मतलब आप लोग स्पेशल लोग हैं मेरे लिए या हम उनके लिए स्पेशल है, मतलब आप लोग मेरे लिए स्पेशल है, ये आप थोड़ा खुद भी सोचा करें. और वाकई में आप लोग मेरे लिए स्पेशल है, तो जब भी मैं आपके पास आती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं ओनली ओनली संडे के दिन आपके साथ बात करने का हमें मौका मिलता है पूरे पूरे दो घंटे के लिए, तो ऐसे ही आपने हमेशा मुझे ज्वाइन करते रहना है सुबह 11 से तो पहले 1 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ. तो आज भी बिल्कुल ऐसा ही है. तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा ही शॉर्ट है, खत्म होने वाला है, और मैं यही चाहूंगी जब मैं नेक्स्ट संडे आऊं और एक नए शौक के साथ, एक नए सवाल के साथ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा सेगमेंट है, जो मेरे टॉपिक्स होते हैं, वो आप लोग विन करें, आप लोग सारे विन करें, देन फिर मैं आपका नाम लेके जो है ना आपको जो है एक सॉन्ग डेडिकेट करूं. तो ये आपके लिए भी अच्छा है जो सुन रहे हैं, आपका नाम लेके जब मैं आपको डेडिकेट करूंगी तो वो बहुत एक प्रायोरिटी मतलब अच्छा लगता है ना. क्या आपने हम स्कीम की एक प्रायोरिटी कस्टमर हैं, कहते हैं क्या प्रायोरिटी कस्टमर जैसे होते हैं, तो ऐसे आप लिसनर मेरी प्रायोरिटी, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, फिर आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा यार कि बंदा मुझे सबसे पहले ज्वाइन करता है और यही बंदा है जो मुझे टाइमली जवाब भी देता है और इस बंदे के लिए मैं डेडिकेट भी करती हूँ सॉन्ग. तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं आपका नाम डेडिकेट करूँ, तो आपने मुझे टाइमली ज्वाइन करना है और मेरे सवाल का जवाब देना है विथ योर फेवरेट सॉन्ग नेम. और अगर वो जवाब बिल्कुल ठीक होता है, आप ये ना सोचा करें कि जवाब गलत होगा तो हमें डिग्रेड फील होगा या हमें अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपका जवाब ठीक नहीं है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन आप कम से कम जवाब देंगे तो अच्छा तो लगेगा ना, पार्टिसिपेंट में शामिल तो होंगे, तो ऐसे ये तो अच्छा लगता है आप लोग मुझे जवाब देंगे और साथ में सॉन्ग भी बताएंगे. आप अच्छा चले ठीक है, अगर आपका जवाब ठीक नहीं भी होगा ना तब भी मैं आपका पसंदीदा सॉन्ग चलाऊंगी, ऐसे हम लोग कर सकते हैं ठीक है. तो एक अच्छा लग रहा होता है और बस ये आप लोगों के साथ है मेरा, क्योंकि हम लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे होते हैं. तो अब अगर आप लोगों से मैंने एक सवाल करा यार, आपने एक सवाल का जवाब देना सिंपल दैट्स इट, तो अब आप वो लोग भी ना करें तो फिर क्या फायदा. तो ऐसे ही और मेरे पेज को आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है. ऐसे ही आपने जाके अभी मेरे पेज को शेयर करना, लाइक करना और मेरी आवाज को सुनने के बाद देर के बगैर जाके लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, मुझे बताना है कि आपको मेरी आवाज, मेरा शो कैसा लगता है, आपको मेरा इंतजार होता है ये तो मुझे बताया, लेकिन आपको शो कैसा लगता है ये जरूर मुझे बताइएगा आप लोग ना.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par KTN News.
6: Irani Amerike difai nizam ke be पार करे वे उर्दन ते हमलन में अमेरिकी फौज जो वदो नुकसान करे वे थो। अमेरिकी ए रूसी मीडिया दी रिपोर्ट, रूसी मीडिया मूजिब ईरान अमेरिकी दिफाई निजाम पार कंदे हदफन के निशान बढ़ायो। न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिब ईरान 17 जुलाई ते उर्दन में अमेरिकी फौज ते चौथों हमलो कयो। हमलन में केतरा ही फौजी जख्मी थिया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कया वया।

0: चयो आहे त उहिदनि में फ़ौजनि जे मौत ते तमामु घणो डुख थियो आहे। फ़ौजनि जी क़ुर्बानी सां अमेरिका जो अज़म वधीक मज़बूत थियो आहे। ईरान डील ते अमल न पियो करे त अमेरिका खे बि फ़िक्र न आहे।
1: डीजीआईएस समर कैंप 2026 में शरीक शागिर्दनि सां खास वहक पूरे मुल्क जे 18 खां वधीक शहरनि जा 9 ऐं 12 जमायत जा 4000 शागिर्द शरीक। डीजीआईएस पीआर ख़ास वहक में दहशतगर्दी जे चैलेंजेस ते तफ़सीली शागिर्दनि जो चवण आहे त असांखे मुल्क खे पेश ईंदड़ अंदरूनी ऐं परडे॒ही सिक्योरिटी चैलेंजेस बाबति असराइती आगाही मिली आहे। बलूचिस्तान में भारतीय प्रोक्सी फितना अल हिंदुस्तान ऐं फितना अल ख़ारिज जे नापाक किरदार बाबति आगाह कयो वियो। हिन दौर में ग़लति मालूमात ऐं प्रोपोगेंडा तेज़ीअ सां पखिड़जण बाबति आगाही ज़रूरी आहे।
0: बारलन जी अगवा ऐं दरियाह ते धारे ख़िलाफ़ जीए सिंध महाज जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। कंधकोट में कारकुननि घंटा घर चौक खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी। सन में जीएम सैयद प्लेटफॉर्म खां रैली कढी वई। ठुल, कुंडरी, फकीराबाद ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा। अॻवाननि जो चवण आहे त सिंध जा 25 ॿार अगवा थियल आहिनि। पुलिस ऐं हुकूमत जी नाअहली आहे। सिंधु दरियाह जो पाणी पंजाब खे विकिरो कयो पियो वञे। फौरी तौर प्रिया कुमारी समेत ॿियनि मुगविन खे बाज़ियाब कराए सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी फराहम कयो वञे।
1: मेहड़ ऐं गढ़ी खेरो में आबादगारनि जा पाणीअ खोट ख़िलाफ़ धरणा। मेहड़ में हारियल आबादगारनि SUP कारकुननि बाईपास खां प्रेस क्लब ताईं 3 किलोमीटर प्यादल मार्च करे इंडस हाईवे ते धरणो हयो। गढ़ी खेरे में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि बेगारी पुल वटि धरणो हयो। धरणे सबबि सिंध ऐं बलूचिस्तान ॾांहुं ईंदड़ वींदड़ ट्रैफ़िक मुअतल थी वई। आबादगारनि जो चवण आहे त आपाशी अमलदार पाणी बासर माण्हुनि खे पैसनि एवज़ विकिरो करे रहिया आहिनि। शाखनि में पाणी न पहुचाए एकड़नि ते बीठल फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी फराहम कयो वञे।
0: टंडो अलहयार में मासूम पुट पीउ हथां मुबैना तौर छुरीअ जा वार करे क़तल। मदीना कॉलोनी में 4 वरहनि जे फयाज़ खे छुरीअ जा वार करे क़तल कयो वियो। बाले जी माउ इल्ज़ाम आहे त कुझु ॾींहुं अॻु मुड़ुस सां नाराज़ थी अमर जे घर रहंदी हुयसि। मुड़ुस राति देर सां घर अची पुट खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो।
1: सखर में हथियारबंदनि जी फायरिंग, हिकु ॼणो क़तल। डेंटर पेंटर कॉलोनीअ में हथियारबंद फज़ुल रहमान खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। वारसनि जो कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज। वारसनि जो चवण आहे त नौजवान खे 4 साल अॻु पसंदि जी शादी करण तां क़तल कयो वियो आहे। नौजवान 4 साल अॻु फरज़ाना मेमण सां पसंदि जी शादी कई हुई। खेसि 2 ॿारनि जो औलाद आहे। अॼु सुबुह फज़ुल रहमान खे फ़ैसिलो थियण बावजूद क़तल कयो वियो। संदसि ॿार ऐं ज़ाल बि क़ैद आहिनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुरियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

तुम्हारी उम्मीद मौजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुन दिल तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समात उनको मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बुरकुली दुआओं के समंदर चाहतों के बारे से लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांसे दर्द गम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आपकी खूबसूरती के लिए कितनी ज्यादा अहमियत और कितनी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने वाले, ये आप लोगों को इस प्रोग्राम में पता चलेगा। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ ही साथ शामिल प्रोग्राम भी होना चाहते हैं, तो आपको बताएंगे क्या तरीकेकार होंगे जो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ज्यादा बातें हैं जो आप लोगों से सुननी है और बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को बताना है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके जी, तो यहाँ पर जितने लोग हमारे साथ मौजूद सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल जी, आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है और इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल जी अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुपरकुल मूड के साथ सुपरकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे, तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरी 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे जिनमें आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए, बातें करने के लिए और जरा खूबसूरती के राजों को जानने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई वाकई इनका जो रिजल्ट है वो कितना शानदार है, इनकी क्वालिटी कितनी मस्त है और ये क्यों आप इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल जी बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसे बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिदरा अली बॉस आगे होंठों पर 440 की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सी नात सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

0: गाना आजकल ट्रेन में चल रहा है, तो जैसे जो चीज ट्रेन में चल रही होती है, जो भी गाना ट्रेन में चल रहा होता है, तो वो गाना हमारे जहन पे बिल्कुल हावी हो जाता है और हम सिर्फ उठते बैठते खाते गाते वो गाना ही गा रहे होते हैं। तो अगर आज आप जो ही कॉल करेंगे हमारे प्रोग्राम में कॉल के जरिए शामिल होंगे, तो आज आप बताएंगे कि आपके जहनों में आजकल कौन सा गाना है जो चल रहा है। मैं देखूं कि आपके यहाँ कैसा ट्रेंड आजकल चल रहा है, कौन से गाने हैं जो आज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, शायद आप लोगों से मुझे पता चलेगा। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, शामिल प्रोग्राम रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी आप हमें 8881 पर मैसेज कर सकते हैं। आज थोड़ा फेसबुक पर भी टेक्निकल इश्यू था, तो उस वजह से हम आज लाइव भी नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा चलो भाई इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं, और जो लोग कॉल्स के लिए कहते हैं तो आज जरा हम कॉलर्स को खुश कर देते हैं। ओके जी, तो अगर आप हमें पैनल पर मैसेज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। ओके जी, बाकी कॉलिंग नंबर क्या है वो तो मैं आखिर आप लोगों को दूसरे लिंक में बता देती हूँ, ठीक है। फिलहाल जो है आप लोग अगर हमारा शो सुन रहे हैं तो पैनल पर मैसेज कीजिए और बताइए आजकल ऐसा कौन सा गाना है जो कि आप लोगों के जहनों पर सवार है भाई, ये स्क्रोलिंग की वजह से है, जो कि आप इतना ज्यादा रील्स देखते हैं, इतना ज्यादा टिकटॉक देखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा गाना आजकल हमारे जहन पर है जो कि सवार हो चुका है। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये ट्रेंड के चक्कर में तो हमने ना अपना दिमाग ही खराब कर लिया, तो बिल्कुल ऐसा है। आप आज मुझे बताएंगे और जल्दी से शामिल प्रोग्राम हो जाएंगे। ऐसे के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक स्पेशली नशर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस्तेमाल करने के तरीकेकार तो आप लोगों को बताए जाएंगे, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के साथ साथ ऐसा सीन बन जाता है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट मिले, तो उसके लिए आपने डायल करना है 03-15-799-0595 बोडी 315-79-5595। ये नंबर तुम्हारा डायल कयो जी, तमाम जे करीबी जनरल स्टोर्स से भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वन अवेलेबल थी ना, तो तुम्हारे वठण में आसानी थी, वठण में आसानी थी तो तुम लगाए सकता, तुम्हारे लगाने में आसानी थी। सो बिल्कुल तुम पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए, चाहे तुम कहीं भी गोठ खाओ, सिटी खाओ, कहीं भी एरिया खाओ, तुम्हें करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए, वही आसानी से तुम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन या वही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन उन्हें तुम वी सो था अवेलेबल कराए सो था। तो नंबर थी तुम लाजमी जो रातों कजो, इन अलावा तुम असें ज्वाइन कहना वनो था, सो हाँ टाइम थे शॉर्ट कमर्शल ब्रेक वठूँ था, उनका जल्दी वापसी तुम्हें मोटी इंदी तुम कहीं न वनो इतने वेठा हो हिं मोटा थी। सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: क्या हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। उधर रहो, उधर।
3: It's 1:30 PM. This time check you buy.
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
6: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
5: अब दर्द को कहें अलविदा
6: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
5: जी हाँ,
6: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
6: ये ऑइंटमेंट
5: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
6: दर्द, सोजिश
5: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
6: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
5: गर्दन और कमर की तकलीफ,
6: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
5: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
6: और जल्दी जलन में मुफीद।
5: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
6: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
5: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
6: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा निखरा निखरा वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
4: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। हर हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: त पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं

0: लाए
1: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल किए कजे
1: मुतासिर थे हंध ते डी में ब का टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान
4: प्यूरी प्रोडक्ट जो है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए प्रोडक्ट जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करता रहता है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई खूबसूरती की हिफाजत कैसे की जाती है तो वो सर आप लोगों को बताएं कि अगर आप खूबसूरती की हिफाजत करना नहीं जानते हैं तो देखा जाए तो पहले आप लोगों की स्किन सही होती थी, आपकी स्किन मतलब ग्लोइंग होती थी, आपके चेहरे की स्किन में कलर जो था वो बड़ा साफ सा था और ग्लोइंग सा था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती है या आप अपने कामों में अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं तो आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाते हैं या तो स्किन को बिल्कुल भूल जाते हैं तो उस सब के चलते हुए आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी रंगत जो है वो सांवली हो जाती है, चेहरे पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो ऐसा है कि अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे पहले तो आप लोगों की स्किन पर जितने मसले हैं वो खत्म करता है, उसके बाद जो है आपकी स्किन को रिपेयर करके आपकी स्किन को जो है ना वो खूबसूरती की जानिब लाता है। तो जब हम वाइट एज ब्यूटी क्रीम की बात करते हैं तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ना वो बहुत अच्छी एक क्रीम है जो बहुत एक अच्छी नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन को रिपेयर करती है, आपकी स्किन को फ्रेश बनाती है और आपकी स्किन को फेयर भी बनाती है और सारी जो है ना जितने भी साइड इफेक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं उन सबसे आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट भी रखती है और साथ साथ रिंकल्स भी दूर हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स भी दूर हो जाते हैं, आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है। और जी आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग होती जाती है क्योंकि वाइट एज ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, एलोवेरा है और जनाब मिल्क है। ये इतनी चीजें नेचुरल और बहुत अच्छी चीजें जो कि ऐड की गई हैं वाइट एज ब्यूटी क्रीम के अंदर। तो यकीन जाने आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लगाएंगे तो सोप साथ में कौन सा इस्तेमाल करेंगे तो आपने क्यों घबराना है भाई, घबराएंगे तो नहीं, आपके पास वाइट एज का ब्यूटी सोप मौजूद है और वाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना ये डिटो कॉपी है भाई वाइट एज ब्यूटी क्रीम की क्योंकि ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। अगर आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम लेते हैं तो उसके साथ उसके जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा आपको वाइट एज ब्यूटी सोप भी मिल रहा है। तो ये चीजें तो दोनों ठीक है जी, आप परचेज करेंगे देखकर आप लोगों को इस मामले में थोड़ा कन्फ्यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम वाइट एज के फेस वॉश की जानब आते हैं तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ डिजाइन किया गया है, थोड़ा सा मुख्तलिफ इसे बनाया गया है क्योंकि वाइट एज जो फेस वॉश है ना उसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई है और ये आपकी स्किन को जो है ना वो इतना खूबसूरत बना देगा, ये इतना क्रीमी सा फेस वॉश है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये फेस वॉश तो बड़ा कमाल का है। तो वाइट एज का फेस वॉश है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे, सोप वाले लोग जो है वो सोप इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर फेयरनेस फार्मूले की जानब आते हैं जो कि वाइट एज लवली क्रीम है तो इसके बारे में जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितने भी लोग, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ जब मैं वाइट एज लवली क्रीम के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो वाइट एज लवली क्रीम जो है ये रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स का फार्मूला है, इसके अंदर 30 विटामिन्स के कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं जिसमें आप लोगों को विटामिन B3 है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और इसी के साथ साथ जो है ना विटामिन्स का भरपूर फार्मूला तो है लेकिन इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि देख रहे हैं कोई कसर नहीं छोड़ी हुई आप लोगों की स्किन का ख्याल रखने में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारी स्किन खूबसूरत नहीं है, हमारे चेहरे पर जो है ना हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं या फिर गर्मियों का सीजन है तो हम मेकअप भी नहीं लगा पाते हैं तो आप ऐसा करेंगे, आप वाइट एज लवली क्रीम का इंतखाब करेंगे और वाइट एज लवली क्रीम के इस्तेमाल से ये होगा कि आपकी जो जल्द है ना वो ऐसा है कि जब आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, स्टूडेंट हैं आप या फिर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो इस सब मामलात में आप लोगों को वाइट एज लवली क्रीम की जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते गर्मी का मौसम है या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि बस हमारे पास टाइम भी थोड़ा है तो हम बस फेस वॉश करें और चुटकियों में रेडी हो जाएं तो आपके पास वाइट एज लवली क्रीम है जो कि चुटकियों में आपको रेडी कर देगी। चाहे आप किसी फंक्शन में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, किसी भी तकरीब में जाएं तो आपके पास वाइट एज लवली क्रीम है जो कि इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को खूबसूरती देगी, निखार देगी, ग्लो देगी, उसी के साथ साथ आपकी स्किन को सन के खतरनाक असरात से बचाएगी भी, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एडेड जी बिल्कुल। सनब्लॉक का भी इसके अंदर फार्मूला एड किया गया है, जो कि आप लोगों की स्किन की हिफाजत करके आप लोगों के चेहरे को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खूबसूरत कर देता है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम भी आप समझ लीजिए कि आप सब लोगों के लिए, कोई एज लिमिट नहीं है, तो बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर उन लोगों की बात करें जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी है, बहुत ज्यादा दाने हैं और वो बहुत परेशान है, तो आप लोगों ने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना है। ओके जी, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आप उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी यानी कि दाने काफी ज्यादा हैं, तो दानों को खत्म करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, जो कि फुल जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। आयुर्वेदिक फार्मूला है जनाब, जो कि आपके एक्नी से फाइट करता है, आपके चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल हो वो खत्म हो जाता है, ब्लैक पॉट्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, एक्नी किसी भी साइज का हो, एक्नी के निशानात हो, कितनी सारी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे तरीके से आपकी स्किन का ख्याल भी रखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करके देखिएगा, और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, बिल्कुल जी ज्वाइन करते रहिए, और साथ साथ जो है अभी मैं आप लोगों की कॉल्स लेना स्टार्ट
0: करूंगी।
4: ओके जी, तो कॉल्स तो स्टार्ट करेंगे, कॉलिंग का सेगमेंट भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ कॉलिंग का नंबर भी बताते चलें जो लोगों को नहीं पता कि कॉल करने के लिए नंबर क्या होने वाला है प्रोग्राम में। तो कॉलिंग नंबर है जनाब 0-22-13-22-88। ये हमारा कॉलिंग नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल करके लाइव प्रोग्राम में कॉल पर शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉल पर आएंगे तो मुझे बताएंगे आजकल ऐसा कौन सा गाना है जो कि आप लोगों के जहनों पर सवार है, कौन सा ऐसा ट्रेंड जो कि आपके मोबाइल फोन्स में चल रहा है, बताइए मुझे जल्दी से। और इसी के साथ साथ गाना सुनते हैं जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और पैनल पर आपके मैसेजेस आते जा रहे हैं, बिल्कुल जी मैसेजेस सेंड कीजिए, आपके शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। गाना थोड़ा सा सुन लेते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना एंजॉय करें, गाना तो सुनेंगे लेकिन साथ साथ आपकी कॉलिंग की सेगमेंट की जाने भी आ जाते हैं, तो आपकी कॉल्स हैं जो कि आती ही जा रही हैं। आना स्टार्ट हो चुकी है, कॉलिंग नंबर है जनाब 0332132188। सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल जो है वो पिक कर लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: हेलो, वालेकुम अस्सलाम, केयर मौजूदा नालू बराए बुधाए जू इमामा आवाज तो थोड़ो कटी पो न हाँ सही है हाँ बुधाए नालो बेर कॉल कना तो लगन दी उमेमा
1: जी।
0: ओके सखर का कॉल कई छाला उमेमा
1: ठीक
0: है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया। फर्स्ट टाइम तुम कॉल लगी आ प्रोग्राम में?
1: हाँ माए दीदी कोशिश
0: लगा चलो फाइनली तुम्हारी कॉल लगी वही मुख्य बुधायो तो प्रोग्राम बुधा असो अच्छा प्रोग्राम बुधा मुख्य बुधायो तो कड़ा प्रोडक्ट इस्तेमाल कया या फिर खाली सिर्फ प्रोग्राम बुधा अच्छा आवाज कर जी तो उमेमा तवा जो वरी उते भी गालायो जिते पेरिया पा गालायो उमेमा हेलो
1: जी ताता तो
0: आवाज आजो कट जी पियो हाने सही आ मुखे बुधायो छा चयो तवा
1: असा डी स्किन खणी आया वाने पज देना जलाए
0: चलो डी स्किन मतलब लगान जो तवा जो फुल प्लान आ डी स्किन लगाने जो प्लान आ तवाजो
1: भलो आ डी स्किन
0: चलो डी स्किन भलो आ बिल्कुल डी स्किन भलो आ मुखे यो बुधायो त तवा केड़ो गानो बुधाइंदा ता जी आज कल ट्रेंड में केड़ो गानो हले तो तवा जे तरफ आवाज कट जी तो डाडो तवाजो मेमा आवाज कट जी तो इलाही तवाजो ता ही क्यों वराय ता कॉल जी ट्राई कयो ठीक आ चलो थैंक यू सो मच उमेमा। फर्स्ट टाइम तुम्हारी कॉल लगी पर अज तुम्हें छा तो लगे तो ही जेको नेटवर्क खराब जो मसलो आज थींदो या फिर सर उमेमा की कॉल पहिरियां तो सही हुई अगते हली करे थोड़ो मसलो बनाए। ओके दिसूं था नेक्स्ट कॉल पे करे नेक्स्ट कॉलर के रस से गड मौजूद आए कॉलिंग नंबर आए 0332132188 आई तुम्हें केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया यो भी तुम्हें का पुछना सी बब्बा। सो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम केर मौजूदा
2: रुस्तम अली तौर तो गलाया बुत कुनो खान पावर ताल के सेवन शरीफ
0: वाला। ओके रुस्तम भा छाला खुश आयो
2: शुक्र आलाए सानन ता बुदायो खुश हो
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया प्रोग्राम बुदो प्या
2: हां प्रोग्राम बुदो प्या काफी अरसे का पो ता लाइव कनु प्रोग्राम में वतियो दादी था के खुशी पछे
0: ना ना मा ता कोशिश कंदी रहंदी आ त तवा जो कॉलिंग वठंदा रहू
2: जी जी
0: अच्छा मुखे बुदाय केडो प्रोडक्ट लगायो पया
2: असा इस्तेमाल यो क्रीम कोन खाता आयो अभी
0: अच्छा तवा खबर आ केडो क्रीम आ नालो अचे तो
2: हां एतो आई थिंक क्रीम आ
0: ओके वाइट एच
2: जी जी वाइट एच
0: अच्छा मुखे बुधायो तो तवा जे अज कल मोबाइल में केडो गानो ट्रेंड ते हले तो
2: हां जी हले तो माराई दे छा मुखे रहा है रात प्यारा डिंगो अबो तो जी
0: जी यो तो हले वे
2: जी जी
0: चलो जबरदस्त केडन दोस्तन के याद कंदा
2: फौजिया
0: सुमरो भाइरन के लिए हलाइंदी मोहब्बत प्रोग्राम में कॉल कई थैंक यू सो मच। ओके जी सो बिल्कुल तुम भी कॉल कर सकता कॉलिंग नंबर है 0332132188 नेक्स्ट कॉल वठंदी केयर मौजूद है। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम केरा झंडो मरी बस तुम चंदा कि झंडो मारी मरी वारी पोची वो
2: ना
0: बस अज के सजे प्रोग्राम में कॉल वी सही टेंशन न वेठो
2: फुल
0: मजे में आयो फुल मजे में आयो
2: फुल तैयार जी काम कराई गई।
0: चलो चलो मुख्य ये बुधायो तो तुम केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो आ?
2: ये तारो जको क्रीम इस्तेमाल कर जको ता बुधायो ये इस्तेमाल कयो
0: पो नालो तो बुधायो मानन के के खबर पे मा केड़ो प्रोडक्ट ही बुधाया
2: बाबा तायो क्रीम में नालो मु याद कायो और दिल दा हसरो
0: नी ये ना कर ना रसाने ये ना कर वणंदी अला वाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाए जो वाइट एश
2: वाइट
0: एश
2: बिल्कुल
0: नेक्स्ट टाइम अगर तुम कॉल से अचो नालो पुछा न बुधाइंदा विणंदी जेड़ो कदे मुझे मथा ना तहां जे मथा
2: बिल्कुल
0: डंड भरी दू मुखे बुधायो तो तवां जे मोबाइल में केड़ो गानो अजकल ट्रेंड ते हले तो
2: नओ कलाम हले कोन को बलोची जी की गाइंदो जो चौकी छोकरो गाइंदा आहिनि जेको माना
0: समझी हम समझी हम चलो
2: मशहूर मोबाइल में रात्रि हलो यो कलाम तारे प्रोग्राम का अगवाड़ मुझी माना मेमोरी में यो कलाम हलो वरी मत एक बजे प्रोग्राम प्रोग्राम स्टार्ट
0: कर चलो चलो माना एडो तक यो गानो वणी वा दी रात बुधो था
2: यो कलाम जाम वणियो है यो कलाम हुए तो असि प्ले कर दोस्तों के डेडिकेशन कर
0: जी जी करे वेठो
2: काटिन का गुलाम रसूल मरी अजीज सोलंगी कालक लाचारी जुड़बी तरह का गुलाम रही बलोच जिके बुधर का अजीज जरवार के सबन के सलाम हो बतू प्यार
0: चलो थैंक यू सो मच प्यारो कुर्बान भा से गड मौजूद हो झंडो मरी खां उन खां अलावा तमाम भी कॉल करी सकोता कॉलिंग नंबर है 0332132288 नेक्स्ट कॉलर हेलो जी अस्सलाम वालेकुम केर मौजूद आ
2: जी रतो दे रखो अब्दुल रहमान सिंधरो
0: अब्दुल रहमान भा छाला खुश आयो
2: केर के ता खुश आयो
0: अल्हम्दुलिल्लाह सब मजे में आयो तमा जी दुआ सा बुधायो प्रोग्राम बुधो पिया
2: जी जी प्रोग्राम बुधो था ढो सुनो प्रोग्राम
0: केड़ो प्रोग्राम बुधो था नालो अचे तो
2: नालो वाइट
0: ओके इस्तेमाल कयो तो वे
2: हाँ बिल्कुल
0: डीजल
2: जनरल स्टोर रत मौजूद
0: वाह साई वाह दिल खुश करे छव मुख्य बुधायो तो ताँच मोबाइल में अजकल केड़ो गानो ट्रेंड ते हले तो
2: सब गाना हलन था असा को अड़ो को
0: मिक्स इन यानी तुम थोड़ो घट रील्स दिसन दा आयो मना ये न सही सकदे टेडन दोसन के याद कनो प्यारो भा जी आवाज कट जी वियो ताजो आवाज कट जी वियो ओके ओके ओके थैंक यू सो मच प्यारा भा तुम कॉल कई रतो देरो का कॉल कई प्यारे भा ओके रतो देरो वाला मानू डाढ़ा माशाल्लाह भला हुआ डिसो उन्होंने बुधायो तो किथे किथे वाइट एश ब्यूटी क्रीम मिले थी कड़े करीबी जनरल स्टोर से उन्होंने पक पान अवेलेबल कराई होंगी तो पान भी अवेलेबल कराए सको था इतने टाइम थो है बबा न्यूज ब्रेक वा ठीक है उनका शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं वापसी जल्दी मोटी तुम अचू था तुम तेस तीन वेह सबर कर सह पटो हाँ जी बिल्कुल माँ ओ हिया वनी ओ हिया मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए

0: आगाह कर रहे हो। इन दौर में गलत मालूम प्रोपेगंडा तेजी से पखिड़ने बाबत आगाही जरूरी है।
1: कराची में अज सुभाणे बरसात जो इम्कान, ईंदड़ टिन डीहन ताईं मौसम झुड़ाली रहंदी। मौसमियात खाते मूजिब कराची वध में वध गर्मी पद 33-35 डिग्री सेंटीग्रेड जे विच में रहण जो इम्कान। अज मामूल खां तेज हवाऊं हलंदियूं ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़न में बरसात जो इम्कान आहे। सूमर ॾींहुं बि शहर में हल्की बरसात जो इम्कान।
0: ॿारनि जे अगवा ऐं दरियाह ते धारे ख़िलाफ़ जीअं सिंध महाज जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। कंधकोट में कारकुननि घंटा घर चौक खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी। सनम में जीएम सैयद प्लेटफॉर्म खां रैली कढी वई। ठुल, कुंडी, फकीराबाद ऐं ॿियनि शहरनि में बि मुज़ाहिरा। अॻवाननि जो चवण आहे त सिंध जा 25 ॿार अगवा थियल आहिनि। पुलिस ऐं हुकूमत जी नाअहली आहे। सिंधु दरियाह ते धाड़ो हणी सिंध जो पाणी पंजाब खे विकिरो कयो पियो वञे। फौरी तौर प्रिया कुमारी समेत ॿियनि मुगविन खे बाज़ियाब कराए सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी फराहम कयो वञे।
1: कोटड़ी में सोनिया खोसो ऐं प्रिया कुमारी समेत ॿारनि जे अॻवा ख़िलाफ़ धरणो। खानपुर वारे इलाइक़े मां 2 महीना अॻु मुबैना तौर अॻवा थियल सोनिया खोसो जे वारसनि ऐं शहरीनि एहतजाज कयो। एहतजाज कंदड़नि चयो त सिंध जे न्याणियुनि सोनिया खोसो समेत प्रिया कुमारी ऐं उजाला सोलंगीअ खे अॻवा कयो वियो आहे। पुलिस खे अञा ताईं बाज़ियाब नाहे कराए सघी। नोटिस वठी मुगवी ॿारणा बाज़ियाब कराया वञनि।
0: मेहर ऐं घड़ी खैरो में आबादगारनि जा पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ धरणा। मेहर में हारियुनि आबादगारनि एसयूपी कारकुननि बाईपास खां प्रेस क्लब ताईं 3 किलोमीटर पैदल मार्च करे इंडस हाईवे ते धरणो हुयो। घड़ी खैरो में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि बेगारी पुल वटि धरणो हुयो। धरणे सबब सिंध ऐं बलोचिस्तान तां ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअत्तल थी वई। आबादगारनि जो चवण आहे त आपाशी अमलदार पाणी बासर माण्हुनि खे पैसनि ऐं बसि विकिरो करे रहिया आहिनि। शाखनि में पाणी न पहुचण सबब हज़ार एकड़नि ते बीठल फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी फराहम कयो वञे।
1: टंडोलियार में मासूम पुट पीउ हथां मुबैना तौर छुरीअ जा वार करे क़तल। मदीना कॉलोनी में 4 वरियनि जे फयाज़ खे छुरीअ जा वार करे क़तल कयो वियो। ॿारणे जी माउ इल्ज़ाम मड़ियो त कुझ ॾींहं अॻु मुड़ुस सां नाराज़ थी अमर जे घर रहंदी हुयसि। मुड़ुस राति देर सां घर अची पुट खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो।

0: सखर में हथियारबंदनि फायरिंग, हिकु ॼणो क़तल। डेंटर पेंटर कॉलोनी में हथियारबंद फज़ल रहमान धमियो खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। वारसनि जो क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ एहतजाज। वारसनि जो चवण आहे त नौजवान खे 4 साल अॻु पसंदी शादी करण सां क़तल कयो वियो। नौजवान 4 साल अॻु फज़ाना मेमण सां पसंदी शादी कई हुई। खेसि ॿिनि ॿारनि जो औलाद आहे। अॼु सुबुह फज़ल
1: तो पिला दो।
2: आइस कॉफी
3: मेरी भी।

0: cool, bro.
1: Glasno Vietnamese iced coffee. Cooler than just coffee. Now also available in cans.
0: मोहम्मद खान चांडे में कतल थियल चाकर खान चांडे जे वारसन मुख चौक ते धरणो हुयो। धरणे सबब वीरपुर खास खिबरो ऐं सांगर रोड मुकमल बंद। गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। मकतूल जे वारसन जो चवण आहे त जेसि ताईं मुख्य जवाबदार गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो ऐं ॿिया गिरफ़्तार न थींदा, धरणो जारी रहंदो।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैन।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
5: यारे ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
6: तो पोइ छा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
5: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
6: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़ब थी। सूर, सोडिय, जिस्म जी नसुन जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्ड सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास उमिरि या हज ते वञण जो ज़रूर पाण सां नालो वठी ख़रीद।
7: जान, GFM 88.9.

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6. Sindh Jo Awaaz.
4: O Pita Ja Pitai, Pita Te Vasei.
3: Sindh Jo Awaaz.
2: Biocon International Pakistan.
5: Lots of fun, loads of mystery, only on GA Radio 98.
6: ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से. बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो और भाईजान स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताइए ना, छुपाते क्यों हैं? छुपाते हैं तो फिर पछताते हैं क्योंकि आप लोगों को उन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो कि चीजें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक हो गया, समझ गए. तो अगर आप भी यहाँ पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जान चुके हैं, बिल्कुल अगर आप व्हाइट हैं तो पहले आप ऐसा कीजिए कि अब आप सुन लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या क्या ऐसे बातें हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अगर इस्तेमाल करने पे कहा जाए तो आप दिल से यानी कि वेलकम कर दें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट कर दें तो इतनी सारी बातें हैं ना कि आप सुनते सुनते ये कहेंगे कि भाई ये इतनी सारी चीजें हैं जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के हैं, फायदे जब हम इस्तेमाल करेंगे. बिल्कुल जी, इतने सारे फायदे हैं. तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार की गई है बल्कि ये तमाम लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार की गई है और खास करके उन लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है जिनके चेहरे पर ना यानी कि ऐसा होता है कि उनके चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, स्किन सेंसिटिव है काफी ज्यादा. और लड़कियां हो या फिर लड़के हो, जब आपकी स्किन सेंसिटिव होती है तब यकीन जाने कि आप ऐसा फील करते हैं कि भाई हमारे साथ ही ऐसा आखिर क्यों हुआ है, हम कहां जाएं, हम क्या करें. कि आप जब सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट लगा देते तो उल्टा असर हो जाता है, उनकी स्किन खराब हो जाती है. अगर ऐसा सीन आपके साथ ही कोई हो चुका है तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि फुल मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है, इसके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मूलेशन है और ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया प्रोडक्ट है. अगर आप ये सोचेंगे कि भाई डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, डॉक्टर्स के ऊपर तो आप वैसे भी ट्रस्ट करते हैं ना, तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए. ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है और बहुत ही जो है ना इसे शानदार तरीके से तैयार किया गया है. ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है. जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ दो दिनों में वाजे नतज आपको मिल जाते हैं. तो बिल्कुल ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जो है ना वो जदीद अज्जा मौजूद है जैसे कि अल्फा आर्बुटीन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है. और रात भर अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आप सुबह उठते हैं तो आपकी स्किन इतनी प्यारी हो चुकी है या है वो काफी दिन बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे भी से हमारी स्किन खराब होती जा रही है. तो बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आगे स्किन जो है वो अंदर तक जो है ना वो नेचुरल निखार आपको नजर होगा आएगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई नेचुरली जो है ना हमारी स्किन ग्लो करना स्टार्ट हो चुकी है और नेचुरली हमें जो है वो निखार मिलना स्टार्ट हो चुका है. तो नेचुरली अगर आप अपनी खूबसूरत को बढ़ाना चाहते हैं बिना किसी केमिकल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की और उसी के साथ साथ रात को लगाने वाला प्रोडक्ट है नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा और इसके साथ साथ सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देगा. तो बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कीजिए. उसके साथ आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो आपको डी स्किन फेस वॉश भी परचेज करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा नहीं कि भाई आपको मैं बोलूं कि करना पड़ेगा क्योंकि जब आप दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ यहाँ पर डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल है. ये दोनों चीजें हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट. और अगर डी स्किन फेस वॉश की बात करें यहाँ पर तो डी स्किन फेस वॉश जो है जनाब ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्लीन बनाएगा और उसके अलावा मॉइस्चराइज रखता है. इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनवश का इस्तेमाल करेंगे हम चाहेंगे कि आपके पास अब वाकई कोई अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपने

0: ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಲಿ
1: गाना खेल बुधंदी तालिम्बिक पेनल की तरफ अचूं था पेनल से तवा खोड़ सारा मैसेजेस जमा थी वाया तो उन्होंने भी शामिल प्रोग्राम रखी वेठूं था ऐसा तो पेनल से केर केर मौजूद है सो बाबा अच्छा चाचा खालिद जुड़े जो हमारे साथ मौजूद कहती अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ओके जी आपको खुश आमदीद कहा जाता है और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते अस्सलाम वालेकुम बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है ओके बेटा मैं कोशिश करूंगी आपकी पसंद का गाना लगा ले आप तो कहीं भी नहीं है हाँ ये बात भी वैसे इसीलिए तो मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल कौन कौन से ट्रेन चल रहे हैं समझ रहे हैं आपने बता दिया कौन सा ट्रेन चल रहा है ओके जी ओके वैसे अभी आपके यहाँ जो ट्रेन चल रहा है ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है हमारे यहाँ चलें जी अच्छी बात है इंजॉय करिए और ये हमारे साथ हैप्पी गर्ल कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्धू जानी क्या हाल है आपके ठीक है जी जी मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसी और कहती है अल्लाह पाक आपको जिंदगी की हर वो खुशी दे जिसकी आप मुंतजर हैं आमीन और इंशाल्लाह और ये हमारे साथ है याली मदद अली नवाज नूरपुर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी बहुत शुक्रिया एंड खुश आमदीद कहते हैं आप और हमारे साथ ही वरियाम अली जतोई कहते हैं सिद्रा बहुत प्यारा शो है एंड बहुत लवली व्हाइट एश क्रीम व्हाइट एश लवली क्रीम

0: स्किन फेस वॉश भी आए। तो ये हमारे साथ ही चंदा जानिया कैसी है, वेलकम टू शो। कहती है मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ किया करे, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहां से रहमत खुदावंदी शुरू हो जाती है। ओके जी, कहती है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और हमारे साथ ही चाचा खालिद कहते मेरी कॉल तो मिलती ही नहीं, मैं कहां जाऊं। मिल जाएगी। अच्छा, ये मोहम्मद जमान भाई हैं, वेलकम बुआ जी। हम कह रहे हैं कि हम एफबी को ऑन कर रहे हैं, लेकिन आप वहां से पैनल की तरफ, हाँ जी बिल्कुल आ चुके। क्योंकि ये हम मासूमों के साथ नहीं, ऐसा है कि थोड़ा सा मसला था फेसबुक के ऊपर, इसी वजह से आज लाइव नहीं आए। वैसे मुझे तो पता है कि मेरी जो पाली पाली लिसनर्स हैं, अगर मैं कहीं पर भी बैठी रहूं तो वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। अच्छा, साइमा मीर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह संजी सदा बहार आ रहे सदरा की आही खुशाही, शो मस्त मस्त है, लेकिन नेटवर्क ने थोड़ा सा बेड़ा गर कर दिया है, पता नहीं क्या हो गया, अपना ख्याल। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही लिखा। और कहती है कि कल वाले शो में तो कुछ ज्यादा ही खराब था भाई, पता नहीं वाकई नेटवर्क का क्या इश्यू है। और ये है कि एक नेटवर्क के ऊपर मैंने थोड़ा सा ये देखा था कि भाई आजकल नेटवर्क इतना क्यों ये लिमिटेड हो गया है, या आजकल इतना नेटवर्क का क्यों मसला है। तो असल बात पता है क्या है, क्योंकि हर एक मुल्क को ना मतलब लिमिटेड नेटवर्क दिया जाता है, इतना नेटवर्क ये एक मुल्क के लिए, दूसरे के लिए इतना। तो हमारे पाकिस्तान में जैसे देख रहे हैं आप, जैसे फोन्स बढ़ते जा रहे हैं, एक घर में 10 फोन्स हैं तो जाहिर बात है उतना नेटवर्क सारे फोन्स यूज करेंगे। तो वो नेटवर्क जब सारे लोग एक साथ जब यूज कर रहे हैं तो लिमिट जो है ना वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, इसी वजह से नेटवर्क का इतना ज्यादा मसला हो गया है। पहले देखें फोन्स थोड़े हुआ करते थे, नेटवर्क क्लियर आता था, तो अब ऐसा सीन है कि वो इसी वजह से नेटवर्क का मसला चल रहा है। तो कोशिश करें कि कम से कम फोन यूज करें ताकि सबको सही से नेटवर्क मिले। वैसे एक घर में 10 फोन्स मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही है। वेल ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे साथ चाचा खालिद कहते हैं एक भी मैसेज आपने रीड नहीं किया, मैं कर रही हूँ जी, थोड़ा सब्र किया करें। और देखिए ये लिंक अगर आपके मैसेजेस में निकल जाएगा तो फिर अगला जो लिंक आएगा उसमें आप लोगों की कॉल्स होंगी, ठीक है। और उसके अलावा कहते हैं हाँ भाई नेटवर्क ये जो है ना पैनल पर मैसेज थोड़े महंगे हो जा रहे हैं, तो इसीलिए बार बार नहीं करें, एक दो मैसेज करें जो कि थोड़े से सही हो, मतलब काम वाले। और मोहम्मद जमान कहते हैं मां भी कल ट्राई कया, अला करे लगी वने, बिल्कुल अला कंदो लगी वेंदी, तव्हां ट्राई करे ॾिसो। और गोठ मोहम्मद तैयब थेबू खां बि बुला थेबू कहते तव्हांजो शो वेरी नाइस आहे, सलाम तव्हांखे, वालेकुम असलाम भा तव्हांखे मोहबतूं। साइमा कहती वाह जी वाह, आज तो आपने दिल नहीं दिलियां जीत ली, क्या गाना लगाया है, बरसों बाद माय मोस्ट फेवरेट गाना। बिल्कुल आज मैंने कोशिश की थी कि अच्छे अच्छे गाने लगाऊं। और कहती हैं टॉपिक में ऐसी चीजों को अपने सर पर सवार नहीं करती, नो वॉचिंग अच्छा करती। और उसके अलावा हैं जी विलेज मोहम्मद उस्मान बिरोही सकरन से, अली अकबर बिरोही वालेकुम अस्सलाम सिद्रा कब आएंगी, मैं आ गई हूँ जी प्रोग्राम कर रही हूँ। और कह रही बाजी आप कैसी है, तबीयत कैसी है प्रोग्राम में, गुड प्रोग्राम है आपका बाजी, अच्छी आवाज के साथ प्रोग्राम गुड है। और आपका पुराना लिसनर अली अकबर बिरोही बाजी, हमसे नाराजगी है क्या, हमारी फरमाइश प्ले नहीं करती, आज सॉन्ग सुनाएगा बिरोही, डेडिकेट भाई मोहरम अली बिरोही, सोट फेस मोहम्मद बिरोही, मासाद वफा आबिद बिरोही, बाजी सिद्रा आज फेसबुक पर नहीं आई, फेसबुक पर इशू था थोड़ा इस वजह से नहीं आई। और उसके अलावा हैं जी कराची से सलाम भाऊ, आइन टॉपिक हल्ला गुला प्ले कीजिएगा तो आपकी मेहरबानी, नहीं तो थैंक्स। वैसे जयपाल भाई आप कहाँ थे। और ये किसी का खा मिला है तो अगर ना का नाम लिया जाए या मैसेज पढ़ा जाए तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा ही मैसेज था, हम ही बदनसीब थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ना टाइम की जानब देखा तो भाई टाइम यहाँ पर हुआ जाता है कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए, ब्रेक से पेड़ भी जरूरी आए बाबा सो प्रोग्राम आए। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, सुनती रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं व्हाइट एश शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।
1: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज, हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो।
2: इट्स 2:30 PM। This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध

0: ऐं जेल जी तकलीफ़ सट धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अजरक के रंग,
3: दिल्ली के टुकड़ो से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क।
1: जबरदस्त ओके कीअं लॻी आहे रिज़ल्ट मिली वियो
4: आहे?
1: चलो सही आहे, मूंखे ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो गानो ॿुधाईंदा?
4: गानो त हिकिड़ो ई आहे, समन जो मूंखे आहे, तव्हां ॿुधणो आहे गानो।
1: चलो मां ॾिसां थी, मूंखे मिलियो त हलाए वठंदासीं। कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?

0: शादी दोस्त मेरा जपड़वा लाड़काने में
1: जी
0: कलोड़ो आए जो सब बुधन और अंग
1: थैंक यू सो मच अजीज बात आप प्रोग्राम में कॉल कई इलाही सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए तव्हां वाइट चेस्ट ब्यूटी क्रीम बि हणो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि हणो था भलो कयो था ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0332132288 नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर केर मौजूद आहे हैलो हैलो आवाज़ अचे थो अच्छा कॉल जो थोड़ो मसलो होंदो वैसे कॉलिंग नंबर आहे 0332132288 अच्छा सो अगर तव्हां बि कोई बि प्रोडक्ट लॻायो था यानी कि अगर तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम लॻायो पिया या वाइट एश जो कोई ॿियो प्रोडक्ट लॻायो था वाइट एश ब्यूटी क्रीम न खां अलावा साबुण बि आहे फेस बि आहे वरी लव क्रीम बि आहे एक्नी ट्यूब बि आहे त उहे बि अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त असांखे ॿुधायो हुन खां अलावा हफ्सा सां सगर माजूद आहे हफ्सा कंहिं सफ़ा तव्हां ॿुधायो कीअं आहे असांखे ॿुधे पई थैंक यू थैंक यू अच्छा सो हीअ वारी कॉल वठूं था ॾिसूं कहिड़ा माजूद आहे हैलो आवाज़ मूंखे त मुंहिंजो मिले थो पर जेकी कॉल आहे उहो नथो ॻाल्हाए नथी ॻाल्हाए ओके सो कॉल कयो त बाबा प्रोपर अहिड़ी जॻह ते बीह करे कॉल कंदा कयो जिते तव्हांजी कॉल मिली वञे ऐं तव्हांजो आवाज़ सही तरीक़े सां असां वटि पहुचे ठीकु इहे थोरो डिस्टर्बेंस थींदी आहे न उहो आहे सो तव्हां बिराए 0232132288 बि कॉल ॾिसूं था केरु सगर मौजूद आहे वालेकुम अस्सलाम केरु मौजूद आवाज कटजे तो भा
0: हेलो
1: हाणे आवाज़

0: जी तो नालो बुधायो पंहिंजो। नेटवर्क जो इशू आहे अदा, नेटवर्क जो इशू आहे तव्हां ॾे। अदीजी कॉल सही थोड़ी न हुई कनेक्ट थियल प्रोग्राम में तव्हां असांखे ज्वाइन कयो पिया। कॉल्स आहिनि तव्हां जा मैसेजेस आहिनि खां अलावा वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हां इस्तेमाल कयो पिया पंहिंजी खूबसूरती खे अगरि वधाइण चाहियो था त तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0333221322 एंड 88। नेक्स्ट कॉल जी तरफ़ अचूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट केर मौजूद आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام ادی جنوری کا خالق لاخر بھن
0: اوکی خالق بھا چالا خوش آیو
1: الحمدللہ خیر ادی ائی بدھو
0: اسا بھی ٹھیک آیو او پروگرام بدھو پیا
1: جی ادی پروگرام وانے دل سا بدھنا آیو
0: کیہ لگندو آ پروگرام
1: جی ادی زبردست
0: اچھا مکھے بدھا تا کیڑو پروڈکٹ استعمال کیو آ वाइटेश लवली क्रीम हणो पिया। वाज साईं वाह, वाज साईं वाह, कीअं भली आहे। वाज साईं वाह, वाज साईं हमारे साथ मौजूद है। हेलो
2: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम, केर मौजूद आ।
2: अलीज़ा
0: अलीज़ा खुशा अलीज़ा। अच्छा
2: तव्हां ठीकु आहियो?
0: अलहमदिल्ला मां बि ठीकु आहियां। प्रोग्राम ॿुधो पिया?
2: जी जी प्रोग्राम ॿुधो पिया।
0: अच्छा मूंखे ॿुधायो कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो अथव या अञा कोन मिले थी मिर्पो ख़ासि में?
2: अञा मिली न आहे, कल्ह वियासीं।
0: कल्ह विया मार्केट?
2: जी जी वियासीं, काफ़ी दुकाननि खां पुछा कई पर न मिली, चवनि था हीउ प्रोडक्ट अञा आयो ई न।
0: ओके चलो इहा ॻाल्हि तव्हांजी ॿुधाए छॾींदासीं।
2: जी जी काफ़ी चकर लॻाया आहिनि पोइ बि न मिली आहे।
0: चलो ठीकु आहे ठीकु आहे। मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हांजे हा कहिड़ो सॉन्ग ट्रेंडिंग में हले थो अॼुकल्ह? वाह वाह वाह, मुंहिंजो गानो
2: आहे।
0: हले थो ॿियो छा चव? चलो ठीकु आहे, मूंखे ॿुधायो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो? जी चलो ठीकु, हमे कॉल कई। जी आवाज़ थोरो कटिजी। छा पई चवे?
2: उहो सिद्रा खे डेडी कयो।
0: अच्छा
2: सिंगर लॻी वई
0: आहे। न न थैंक यू थैंक यू, तव्हांजी मोहबतूं आहे।
2: गानो प्ले कंदे?
0: कहिड़ो कहिड़ो कहिड़ो ॿुधायो? चलो ठीकु आहे, अगरि हिन प्रोग्राम में न हलायो त असां 5 बजे वारे प्रोग्राम ॿुधंदासीं। ठीकु
2: आहे
0: ओके, थैंक यू सो मच अलीज़ा ऐं ॿिन्हिनि जो थैंक यू बाबा प्रोग्राम में कॉल कई। हुन खां अलावा एॾो सुठो वी आई पी गानो ॿुधायो, वरी मूंखे डेडिकेट कयो। न त असां हिन क़ाबिल किथे बाबा। ऐं बिल्कुलु जेकर तव्हां बि कॉल करणु चाहियो था त कॉलिंग नंबर आहे 0333221322 एंड 88। नेक्स्ट कॉलर ॾिसूं केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हैलो जी, वालेकुम अस्सलाम, केरु मौजूदु
3: आहे?
0: सईद।
3: जी जी
0: ओके सईद, कैसे ठीक ठाक है? अलहमदिल्ला ठीक हूँ। आप बताएं प्रोग्राम सुन रहे?
3: बिल्कुल सुनता हूँ प्रोग्राम डेली।
0: अच्छा डेली सुनते हैं, कौन सा प्रोग्राम है नाम बताएं जरा?
3: ब्यूटी क्रीम।
0: ओके इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ खाली प्रोग्राम सुनते?
3: सुनते हैं प्रोग्राम, इस्तेमाल करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे।
0: अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, मुझे बताएं आजकल आपके ट्रेन में कौन सा गाना चल रहा है?
3: मेटल खूबसूरत।
0: हाय हाय, ये तो इतना पुराना गाना है, ट्रेन में कैसे चल रहा होगा?
3: बस हम यही गाना गाते रहते हैं।
0: चले चले बहुत बढ़िया, किसे सलाम देंगे?
3: सलाम किसी को नहीं, अल्लाह
0: हाफिज़। चले थैंक यू सो मच। ओके जी सो बिल्कुल आप सुन रहे हैं यहाँ पर वाइट एशियन चीज कैन ब्यूटी शो। कॉलिंग नंबर है 0333221822 सिर्फ 10 सेकंड मौजूद आए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, लड़का बेवफा चांडियो
0: बेवफा चांडियो
4: जी बिल्कुल।

0: फर्स्ट टाइम अथव फॉर चांडियो भा?
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो असांजो?
1: हा बिल्कुल ॿुधंदा आहियां। हिकु गज़ल ॿुधाइण
0: आयो।
1: इक़रार अव्हां खां थी न सघियो, इनकार अव्हां खां थी न सघियो।
0: वाह वाह।
1: इक़रार अव्हां खां थी न सघियो, इनकार अव्हां खां थी न सघियो। चुपचाप कतलाम करे थो शाबस सही।
0: वाह वाह।
1: पंहिंजे प्यार मोहबत नफ़रत जो इज़हार अव्हां खां थी न सघियो। मुंहिंजे कुर्ब जो केस त सालनि खां तुंहिंजे दिलि जी कोरत में पियो आहे।
0: वाह वाह।
1: आज़ाद करण या क़ैद करण सरकार अव्हां खां थी न सघियो। आशाऊं अरमान खणी तुंहिंजे ज़ख़्मी नेठि गुज़ारे वियो। मुंहिंजे लाइ
0: वाह वाह।
1: मां सलामत कंदुसि वफ़ा चांडियो खे ऐं तालमरी।
0: ओके, थैंक यू सो मच भा, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई, एॾो प्यारो ख़ूबसूरत गज़ल ॿुधायो ऐं तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, हुन जे लाइ थैंक यू सो मच। छा नालो हुयसि? बेवफ़ा चांडियो शायदि। ओके जी, सो सिक्योरिटी टाइम भी मैं देख रही हूँ, टाइम की भी जरा किल्लत है हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक है, ये जरा मैं लगा लेती हूँ।

ओके जी, सो हमारे साथ दर्दे दिल भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दर्दे दिल। और हमारे साथ हैं जी फजीला सिंधी। वालेकुम अस्सलाम। आपने सलाम दी अपनी अम्मी को, सब सिस्टर्स को, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। साइमा मीर कहती हैं सच्ची बताऊं साइमा मीर, तो मुझे पता ही नहीं है सब चीजों का। मुझे नहीं पता है कि क्या है, क्या चल रहा है ये। पूछ भी आप कैसे रही हैं। अच्छा, उन्होंने कहा अलावा साइमा मीर बहुत शुक्रिया। हैप्पी गर्ल कहती है सिडो जानी। हाँ जी बताते हैं, रुको जरा सबर करो। और ये कहते हैं भाऊ कराची में बस गया हूँ भाई, टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी हो गया हूँ, रात को 2 बजे घर जाता हूँ, अपना दिया है यहाँ पे, क्या बात है जी। पारी मानो जो यो कमा, मतलब जो ना कारो भाई। कहते हैं आप फाइन है सिस्टर जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन शाइन। आप बताएंगे? कहते हैं कि हमारी मॉम पापा और सब कहते हैं वापस आओ, लेकिन मैं कराची में ओके हूँ। हाँ कराची में वैसे खुश रहे, इंजॉय करें। और ये हमारे साथ हैं, हेलो अदी जी, बाजी जी, सिस्टर जी एंड भाऊ। भाऊ तुम्हारा सब मैसेज पढ़ी वही आए हाँ, लगे तो तुम पांच मैसेज बुधा को ना है।

0: ओके सो ही वारी कॉल बैठू था ही शायद प्रोग्राम जी लास्ट कॉल थी सके थी सो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम मेरा मुस्कान चाल खुशियां
0: अल्हम्दुलिल्लाह केरे से सगर मौजूद आप
1: मां सखर मां शहर अली गुल मीरानी
0: ओके मीरानी भा खुश आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है ओके छोटी छोटी पोटरी है मैडम
0: जी जी बुधायो
1: तेरी के प्यार में दादा बिचम दुख अते तते फिरंदो वता साड़े छड़ो लुख
0: वाह वाह
1: तेरी ते दिल जो पक्को आ जा असलिया को रुक
0: वाह वाह
1: अखियों वड़ाए ओ चिते कैसे दादी चुक
0: हाय हाय
1: तेरा मुस्कान मिला कान सुख ते खिलाड़ी अली गुल मीरानी जी
0: हाय हाय सुख न मिलंदा इन बाबा इन एड़न कमन में
1: जो खैर आ खुश आयो ना बाबा
0: जी खैर सफा केड़न दोस्तन की याद कंदा जी जी बिल्कुल भा कोशिश कंदासीं डेली कॉल वठूं ऐं तव्हांजो मोहब्बतूं ऐं प्रोग्राम खे पसंद कंदा आहियो सो थैंक यू सो मच इजाज़त वठण जो टाइम थी वियो आहे वरी इंशाल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात थींदी ॻाल्हाईंदासीं सो अदे खे अलविदा ऐं उन खां अलावा शायरी ॾाढी भली ॿुधाए सो हाणे तव्हां कॉलर जेको आहे थोरो चुप करे वियो साइड कयो असांजे वञण जो टाइम थी वियो आहे बाबा वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात जेका आहे पंजे बजे वारे प्रोग्राम में थींदी ऐं जेके जेके माण्हू वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि इस्तेमाल कनि पिया त ॿुधायो बाबा तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पिया ऐं उन खां अलावा तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से नथा मिलनि प्रोडक्ट त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो जी बिल्कुल भाऊ पांच बजे भी आप लोगों के साथ साथ मुलाकात होगी पांच बजे मिलिएगा जरा आपको बताएंगे कौन सा प्रोग्राम

और मोहम्मद सलमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ. अच्छा सा खालिद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ. ऐसे के साथ सो मुकलानी नाही बाबू सिंह सलामत, सलामत अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल.

नौरीन खान जे हक जे जंग खिलाफ बयान ते पीटीआई बानी ऐं संदसि कुटुंब पाकिस्तान खिलाफ प्रॉक्सीज करार। वफाकी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी ऐं मुल्क जी वज़ीर तलाल चौधरी जी ॻाल्हि ॿोल। तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त हक़ जी जंग बाबति नौरी न्याज़ीअ जो बयान अफ़सोसनाक ऐं मज़म्मत जोॻो आहे। हक़ जी जंग पाकिस्तान जी तारीख़ी कामयाबी आहे। बानी पीटीआई ऐं संदसि कुटुंब जो हदफ़ पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण आहे। नौरीन न्याज़ीअ जे बयान मां वाज़े थियो आहे त इहे पाकिस्तान ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ आहिनि।

0: जज़ब थी। सूर्य आए सूर्यमा आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
0: ना दा असाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आए चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल किए कजे
0: मुतासिर थे हंध ते डी में ब का टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो। फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: अजरक के रंगों से रंगी
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कहती हूँ अपनी
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे या मेरे दिल का धड़कना।
2: लिखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
3: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

0: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: आई
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान जे शहर सीरक हाजियाबाद कशमका बंदर अब्बास से धमाका। अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड जो चवण है अठी रात में कल हमला मुकम्मल कया वया है। हमलन में ईरानी फिजाई फौजी हंधन बहरी सलाहतन मिजाइल एंड ड्रोन मरकजन के निशानो बनायो। अमेरिका सजी दुनिया में मौजूद पेंजे शहरन लाए सफरी अलर्ट जारी करे छो। विच ओभर के सूरतयाल सबब शहरी गैर मामूली एहतियात की हिदायत।
2: अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जा भी खिते में मौजूद अमेरिकी अदलती हमला ईरानी पासदारन इनकलाब जो चवण। ऑपरेशन लाइट मरहले में कुवैत में बिन अमेरिकी फौजी अडन के निशानो बनाया। अल अज़हरी कैंप में एक हथियार के डिबो ए अलिफ सालम अडे से पेट्रियाट रेडार के निशानो बनाया। हमले में फजाई निगरानी के रेडार के भी निशानो बनाया वो।
1: ईरानी अमेरिकी दिफा निजाम के भी पार कर उर्दन ते हमलन में अमेरिकी फौज जो वो नुकसान करे विधो। अमेरिकी ए रूसी मीडिया की रिपोर्ट। रूसी मीडिया है ईरान अमेरिकी दिफा निजाम पार कंदे अर्फन के निशानो बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिब ईरान 17 जुलाई ते उर्दन में अमेरिकी फौज ते चौथों हमलो कयो। हमलन में केतरा ही जख्मी फौजी थे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कया व्या।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
1: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू कुदरती मजबूती का न्यू लुक।

0: टंडोल लहर में मासूम बाल के कतल की जांच के लिए एसएसपी जेआईटी जोड़े छी है। चयन वर्ष के बार फयाज कमराणी के छुरी जहा वार कही कतल कर वो। सैयद सलीम शाह जो चवण है तो डीएसपी टंडोल लहर की अगुवाणी में चार रुकनी कमेटी जोड़ी है।
1: कतल मालूम थो है हसास है। जाल मुड़स काफी अरसे का जेड़ो हलंदड़ हो। शक की बुनियाद से नींगर पी मुमताज कमराणी के हिरासत में वरतो वो है। जोड़ियल जीआईटी मामले की हर रुख का जांच कंदी मुलविस जवाबदार तीन पहुंचाईंदी।
0: भरसा मासूम बाले के कतल वाले वाक्य की जांच के लिए एसएसपी पारा जीआईटी जोड़ी वही है। एसएसपी सैयद सलीम शाह चवण है तो चयन वर्ष के फयाज कमराणी के छुरी जहा वार कर कतल कर वो है। कतल जो मामलो इंतहाई हसास है। जाल मुड़स काफी अरसे का जेड़ो भी हलंदड़ हो। डीएसपी टंडोल लहर की अगवाणी में चार रुकनी कमेटी जोड़ी है जिन मामले की जांच कंदी।
1: कतल मामलो इंतहाई हसास है। जाल मुड़स काफी अरसे का जेड़ो हलंदड़ हो। शकजी विजय कमराणी के हिरासत में वरतो वो है। जोड़ियल जेआईटी मामलो हर रुख का जांच कंदी मुलविस जवाबदार तीन पहुंचाईंदी।
0: भरसा अज संगल पी पे मासूम पुट के छुरी जहा वार कर मोबाइल तौर से कतल जांच के लिए एसएसपी पारा जेआईटी जोड़ी वही है। खबरों हाँ वा शॉर्ट ब्रेक
1: अपडेट रहा रहो केटी न्यूज।
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीएएफएम 91.6।
4: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो है जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
5: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी।
4: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा।
5: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर

0: हंध ते आसानी सां जज़ब थी। सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
0: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
0: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अडी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: मिल
1: द सच जो आवाज संगीत जो आवाज FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर उधर
2: या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: ये yeah!

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जो बयान अफसोसनाक है, मज़म्मत जोगो है। हक जी जंग पाकिस्तान जी तारीखी कामयाबी है। बानी पीटीआई है संदस कुटुंब जो हदफ पाकिस्तान के नुकसान रसायण है। नौरीन न्याजी के बयान में वाज़े थो है ये पाकिस्तान खिलाफ प्रॉक्सीज़

अमेरिकी फौज जा ईरान ते हमला। ईरान के शहर सिर गाजियाबाद कस्म बंदराबाद से धमाका। अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड जो चवण है अठी रात में कल हमला मुकम्मल कया व्या। हमलन में ईरानी फिजाई फौजी हंधन बहरी सलाहित मिजाइल ड्रोन मरकजन के निशानो बनायो। अमेरिका सजी दुनिया में मौजूद पैंजे शहर लाए सफरी अलर्ट जारी कर छो। विच ओभर की सूरतयाल सबब शहरी गैर मामूली एहतियात की हिदायत। अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जाबे खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन से हमला। ईरानी पासदार इनकलाब जो चवण है तो अमेरिकी फौजी हदफन के निशानो बनाया है। ऑपरेशन लाइटिंग जी सोरे मरहले में कोवैत में बिन अमेरिकी फौजी अड्डन के निशानो बनाया। देर कैंप में एक हथियार की डिपो अली सालिम अडे ते पेटियार रेडार के निशानो बनाया। हमले में फिजाई निगरानी के एक रेडार के भी निशानो बनाया वो।

0: ईरानी अमेरिकी दिफा निज़ाम के बेपार करे रवयो। उर्दन ते हमलन में अमेरिकी फौज जो वरो नुकसान करे विधो। अमेरिकी ए रूसी मीडिया जी रिपोर्ट। रूसी मीडिया चयो आहे ते ईरान अमेरिकी दिफा निज़ाम पार कंदे हदफन के निशानो बणायो। न्यूयॉर्क टाइम्स मौजूब ईरान 17 जुलाई ते उर्दन में अमेरिकी फौज ते चौथों हमलो कयो। हमलन में केतरा ही फौजी जख्मी थिया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कया व्या। उर्दन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी एहलकार मारजण ऐं 4 जख्मी थियण जी तस्दीक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड मौजूब 17 जुलाई ते उर्दन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी एहलकार मारजी विया। जख्मी थियल 4 एहलकारनि खे तिबी इमदाद ॾियण खां पोइ इस्पताल मां डिस्चार्ज कयो वियो। ईरानी हमले गुम आहे ॾियण खां पोइ मारजी वियल एहलकारनि जी सुञाणप ज़ाहिर कई वेंदी। ईरान अमेरिका जंग छिड़े वई। अमेरिकी सदर पेंटागोन खे पूरी ताक़त सां ईरान ते हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त उर्दन में फौजियुनि जी मौत ते तमामु घणो ॾुख थियो आहे। फौजियुनि जी क़ुर्बानीअ सां अमेरिका जो अज़म वधीक मज़बूत थियो आहे। ईरान डील ते अमल न पियो करे त अमेरिका खे बि फ़िक्र नाहे। नायब वज़ीर आज़म वेनेज़ुएला जे परॾेही फ़ोन ते राब्तो। नायब वज़ीर आज़म पारां वेनेज़ुएला में ज़िलज़िले सबबि जानी नुक़सान ते ताज़े जो इज़हार। परॾेही वज़ीर आज़म इसाक़दार चयो त उमीद आहे त वेनेज़ुएला जल्द बहाली तरफ़ अची वेंदो। पाकिस्तान ॾुखे वक़्त बीठल आहे। परॾेही वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरफ़ां हमदर्दी ऐं एकीअ जे इज़हार ते थोरा मञिया। वेनेज़ुएला पारां अमेरिका ईरान ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान जे हाकारी किरदार जी साराह। डीजीआई समर कैंप 2026 में शरीक शागिर्दनि सां ख़ास वहक। पूरे मुल्क खां वधीक शहरनि जा 9,000 शागिर्द शरीक। डीजीआईएसबीआर ख़ास वहक में क़ौमी सलामती ऐं दहशतगर्दनि जो चवणु आहे अंदरूनी ऐं परडे॒ही सिक्योरिटी बाबति असराइती ऐं फितना ख़ारिज जे नापाक किरदार बाबति आगाह कयो वियो। हिन दौर में ग़लति मालूमात ऐं प्रोपोगेंडा तेज़ीअ सां पखिड़जनि बाबति आगाही ज़रूरी आहे। कराची में अॼु ऐं सुभाणे बरसाति जो इम्कान। ईंदड़ 3 ॾींहनि ताईं मौसम झुड़ाली रहंदी। मौसमियात खाते मूजिब कराची वधि में वधि गर्मी पद 33 खां 35 डिग्री सेंटीग्रेड जे विच में रहण जो इम्कान ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान आहे। सूमर ॾींहुं बि शहर में हल्की बरसाति जो इम्कान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझी जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
4: तपोई छा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा कुदरत

0: जुजनसा तैयार कैल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदते जल्दी जजब थी सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोरन जो सूर कंध आई कुलन जी त्रीम साथी क्रीम इस्तेमाल किए कजे रुगो मुतासिर हंदते डीए में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वठ आई बुध जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा
1: वाह पोए अजी वठींदस
0: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजी वेजी मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: दिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: सुबह की

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो
2: की ट्रेजेडी।

0: स्क्रीनो
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज तबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: यार कुछ डीहन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
4: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
4: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ सट धक लगण पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे
3: इस्तेमाल कीअं कजे
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लगायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अडी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, एफएम।

0: हीट सोप जिल है,
1: फकीरी हीट सोप
0: खारिश है,
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बंदर अब्बास ते धमाका, अमेरिकी फौज जी सेंट्रल कमांड जो चवण आहे त 8 रात में कयल हमला मुकमल किया विया आहिनि। हमलनि में
2: ईरानी फिज़ाई फौजी हंधनि
1: मेज़ाइल ऐं ड्रोन मर्कज़नि खे निशानो बणायो वियो। अमरीका सॼी दुनिया में मौजूद पंहिंजे शहरनि लाइ सफ़री अलर्ट जारी करे छॾियो। विच ओभर जी सूरतहाल सबब शहरी गैर मामूली एहतियात जी हिदायत। अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा बि खिते में मौजूद अमरीकी अॾनि ते हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब जो चवण आहे त अमरीकी फौजी हदफनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन लाइटिंग जी 16 मरहले में कुवैत में ॿिनि अमरीकी निशानो बणायो। अल हुदेरी कैम्प में हिकु हथियारनि जी डिपो ऐं अली अल सालम अॾे ते पेट्रियॉट रेडार खे निशानो बणायो वियो। हमले में फिज़ाई निगरानीअ जी हिकु रेडार खे बि निशानो बणायो वियो।

ईरानी अमरीकी दिफ़ाई निज़ाम खे बि पार करे वियो। उर्दन ते हमलनि में अमरीकी फ़ौज जो वॾो नुक़सान। अमरीकी ऐं रूसी मीडिया जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान अमरीकी दिफ़ाई निज़ाम पार कंदे हदफ़नि खे निशानो बणायो। न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिबि ईरान 17 जुलाई ते उर्दन में अमरीकी फ़ौज ते चोथों हमिलो कयो। हमलनि में केतिरा ई फ़ौजी ज़ख़्मी थिया। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स बि तबाह कया विया।

DGISPR जी समर कैंप 2026 में शरीक शागिर्दनि सां ख़ासि वहक पूरे मुल्क जे 18 खां वधीक शहरनि जा 9 ऐं 12 जमात जा 4000 शागिर्द कैंप में शरीक। DGISPR ख़ासि वहक में क़ौमी सलामती ऐं दहशतगर्दीअ जे चैलेंजेस ते तफ़सीली रोशनी विधी। शागिर्दनि जो चवण हो त असांखे मुल्क खे पेश ईंदड़ अंदरूनी ऐं परडे॒ही सिक्योरिटी चैलेंजेस बाबति असराइती आगाही मिली। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान ऐं फितना ख़ारिज जे नापाक किरदार बाबति आगाह कयो वियो। हिन दौर में ग़लति मालूमात ऐं प्रोपेगेंडा तेज़ीअ सां पखिड़जण बाबति आगाही ज़रूरी आहे।

सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सिंध कायम आहे ऐं हमेशह रहंदी। सिंध में शाहराहनि जी तामीर ऐं बहाली लाइ वफ़ाकी सरकार फंड फराहम कया आहिनि। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी मुल्कत वज़ीर कीअलदास कोश्तानी झोक शरीफ़ में मरहूम लाल बख्श जतोई जे वारसनि सां राज़ियत बाद ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त वफ़ाक अवामी भलाई लाइ सूबनि सां सहकार जारी रखंदो। सजावल में पाणी जी खोट ते लाॻापियल अख़्तियारनि सां राब्तो आहे। कीअलदास कोश्तानी चयो त प्रिया कुमारी रुगो राजकुमार जी न पर 6 करोड़ सिंधियुनि जी नियाणी आहे। सभु प्रिया सां प्यार कनि था ऐं बाज़ाबी लाइ परेशान आहिनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: गगन। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: अरे उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो बदलता रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप
1: सुने बानी ऑफ वफाकी वजीर तारिक मुल्कती वजीर जो बयान अफसोसनाक हक की जंग के नुकसान रसायण है। नूरी नियाजी के बयान में वाजे थे तो वे पाकिस्तान खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। अता तारण लाहौर में खिताब कंदे तो नूरी नियाजी के बहस वही कवरेज डिनी। उन्हें सियासत दफन थी वही है। कश्मीर में हिजरत कर आयल जो सीटू केर भी खत्म न तो कर सके। अमरीकी फौज जा ईरान ते हमला। ईरान के शहर सेरक हाजी आबाद कशम ए बंदर आबाद से धमाका। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का चवण है ठी रात में कैल हमला मुकम्मल किया वा। हमलन में ईरानी फिजाई फौजी हंधन बहरी सलाहतुन मिजाइल एंड ड्रोन्स मरकजन के निशानो बनाया वो। अमरीका सजी दुनिया में मौजूद पैंजे शहर लाए सफरी अलर्ट जारी कर छो। विच ओभर की सूरत हाल सबब शहरी गैर मामूली एहतियात शहर के गैर मामूली एहतियात की हिदायत। अमरीकी हमलन के जवाब में ईरान जब खिते में मौजूद अमरीकी अड्डन से हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब जो चवण है तो अमरीकी फौजी हदफन के निशानो बनाया वो। ऑपरेशन लाइटिंग की सोरहवीं मरहले में कुवैत में बिन अमरीकी फौजी अड्डन के निशानो बनाया वो। अल हुदेरी कैम्प में एक हथियार के डिपो ए अल सालम अड्डे से पेट्रियॉट रेडार के भी निशानो बनाया वो। हमले में फिजाई निगरानी की एक रेडार के भी निशानो बनाया वो। ईरानी अमरीकी दिफाई निज़ाम के भी पार कर उर्दन ते हमलन में अमरीकी फौज जो वो नुकसान। अमरीकी ए रूसी मीडिया की रिपोर्ट मूजिब ईरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पार कंदे हदफन के निशानो बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिब ईरान 17 जुलाई से उर्दन में अमरीकी फौज से चौथों हमलो कर हमलन में केतरा ही फौजी जख्मी थे। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किया वा। उर्दन में ईरानी हमले में ब अमरीकी एहलकार मारजन ए चार जख्मी थियण की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड मूजिब 17 जुलाई से उर्दन में ईरानी

ऑलरेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन जे चेयरपर्सन बुशरा आरई चयो आहे त लेडी हेल्थ वर्कर्स जी जिदोजहद रुगो रोजगार न पर सिंध जे अवाम जे बुनियादी सेहत जे हक जे तहफ़ुज़ जे लाइ आहे। काल हिकड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे हुन चयो त सिंध हुकूमत जे पॉलिसिन सबब लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खे आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म करण, निजी शोबे हवाले करण, प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्सिंग ॾांहुं धिकियो पियो वञे, जेके अवामी सेहत जे लाइ इंतिहाई ख़तरनाक आहे। हुन इल्ज़ाम हयो त प्रोग्राम जे ऑपरेशनल बजट में 75% कटौती कई वई आहे, जंहिं सबब दवाउनि, तिबी सामान, निगरानी ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी फराहमी सख़्त मुतासिर थी आहे। हुन वधीक चयो त दस्तावेज़नि मां बि ख़तम कयो वियो आहे। हुन चयो त लेडी हेल्थ वर्कर्स निज़ाम कमज़ोर थियो त बहराड़ी ऐं पुठिते पियल इलाइक़नि में माउ ऐं ॿार जी सिहत, वैक्सीनेशन, पोलियो मुहिम ऐं ॿियनि बुनियादी सिहत जी ख़िदमतुनि खे नुक़सान पहुचंदो। हुन मुतालबो त ऑपरेशनल बजट में कयल 75% कटौती वापस वठी महंगाई जे तनासुब सां बजट में वाध कई वञे, प्रोग्राम जी सुञाणप, नाले ऐं बुनियादी ढांचे खे कानूनी तहफ़ ॾिनो वञे। कंहिं बि क़िस्म जी निचकारी, आउटसोर्सिंग या इंतज़ामी तब्दीलीअ खां अॻु लेडी हेल्थ वर्कर्स जी चूंडियल क़यादत सां मुशावरत कई वञे। हुन ख़बरदार कयो त सदन जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न कया विया त सॼी सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू कई वेंदी, आईनी ऐं कानूनी वेड़ जे लाइ सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो कयो वेंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह तवान ऐं खाते खे हिदायत कई आहे त सॼे सूबे में सोलर होम सिस्टम किट्स जी विर्छ ऐं इंस्टॉलेशन वारे कम खे वधीक तेज़ कयो वञे। काल वज़ीर आला हाउस में 18.206 अरब रुपियनि जे लागत वारे सोलर होम सिस्टम प्रोजेक्ट में अगभराई बाबति इजलास जी सदारत कंदे वज़ीर आला चयो त पीपुल्स पार्टीअ जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जे हिदायतुनि ते शुरू कयल हिन प्रोजेक्ट जो मक़सदु सॼे सिंध में 2,75,000 ऑफ ग्रिड ऐं प्रोटेक्टेड ऑन ग्रिड मुस्तहक घरनि खे मुफ़्त सोलर बिजली फराहम करणो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त तवानाई खातो सालियाने तरक़ियाती प्रोग्राम ज़रिए 18.206 अरब रुपियनि जी लागत सां ग़रीब ख़ानदान जे लाइ सोलर होम सिस्टम ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट ते अमल करे रहियो आहे। हर मुस्तहक घर खे मुकमल सोलर होम सिस्टम ॾिनो वेंदो, जंहिं में

180 वाट जो सोलर पैनल, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट चार्ज कंट्रोलर मोबाइल चार्जिंग की सहूलत, 25 वाट जो डीसी पखो, 5 वाट जो 3 एलईडी लाइट्स शामिल आयन। उन्हें प्रोजेक्ट में 275,000 घरन के फायदो थींदो। इजलास के बुधायो वियो तो सिंध के मुख्तलिफ जिलन में 15,000 का वधीक सोलर होम सिस्टम किट्स विरायूं लगायूं वयूं आहिनि। अप्रैल 2025 में शुरू थियल मनसूबो जून 2027 ताईं मुकमल थियण जो इम्कान आहे। सिंध हुकूमत पारां सरकारी स्कूल में शागिर्दन जी दाखिला वारे निज़ाम के डिजिटलाइज करण जो फैसलो। हर शागिर्द के लिए मुनफरद दाखिला आईडी तैयार कई वेंदी जैंखे पे फार्म से गढ़ो वो। उन हवाले से तालीम वारे वजीर सरदार शाह के सदारत हेठ नादरा अख्तियार से इजलास किया। उन मौके से सूबाई वजीर सरदार शाह चयो तो सिंध के स्कूल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वसत डी पी वे। उस्ताद शागिर्दन की हाजिरी वाले निज़ाम आखिरी मरहले में आए। उन हाँ हर शागिर्द जो दाखिला निज़ाम नादरा के तस्दीक से गड डिजिटल तौर से महफूज हों। सिंध के कमिश्नर पुलिस के पेट्रोल के जखीरा आंदोजी की निगरानी कार्रवाई की हिदायत। उन डसमी चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की सदारत हेठ थियल इजलास में सूबे अंदर बारण फ्यूल जो सूरत हाल जो जायजो वरतो वियो। इजलास के बुधायो वियो तो सिंध के 4 जिलों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जा 34 ऑयल डिपो 30 जिलों में 2136 पेट्रोल पंप रिटेल आउट आन। ओगरा कराची पारा तेल के जखीरा आंदोजी रोकने के लिए खसूसी इंस्पेक्शन टीम जोड़ियों वयूं आहिन। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नरन पुलिस अख्तियारन के ओगरा जी इंस्पेक्शन टीम सां सहकार की हिदायत कंदे चयो तो कें भी जिले में तेल जी हथरादू खोट या जखीरा आंदोजी बर्दाश्त न कबी। उन कमिश्नरन डिप्टी कमिश्नरन पुलिस अख्तियारन के तेल सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग रोजानो बुनियाद रिपोर्टिंग जो हुक्म दिनो। उन हिदायत कई तो समूरन ऑयल डिपोन पेट्रोल पंपन से मौजूद स्टॉक की बाकायदगी से निगरानी कई वे। ओगरा ऑयल कंपनियों तोड़े जिले इंतजामिया के विच में राबतो कायम रखो वे तो जी तेल सप्लाई में का भी रुकावट पेश न अचे। बलोचिस्तान सिंध के साजे पासे का कीर्थर केनाल के पानी दियो। सवे जमींदार आबादगार उस्ता मोहम्मद खान रैली की सूरत में सखर पहुंची वह। एहतजाजी मुजाहरे बाद धरणू पुलिस खेन ग्लोब चौक वट रोके वरतो। राइट बैंक केनाल कीर्थर में पानी की शदीद खोट खिलाफ सिंध बलोचिस्तान हारी जमींदार इतिहाद के अगवान मीर हसन खान शैलानी बिन की अगवाणी में सवे जमींदार आबादगार सखर बिरार धरणो हणने के लिए पहुंची वह। सखर पुलिस के ग्लोब चौक वट

रोके वरतो जिते आबाद गार धरणो हणी वेही रहिया। एहतजाज दौरान ट्रैफिक जी अचवंज मौतुल थी वही। आबादगार पांजे हकन जे लाए जोरदार नारेबाजी कई। उन मौके ते अगवाण चो तो सखर बेरार ते पानी मौजूद हुजण बावजूद खीरथर केनाल आई दादू केनाल में पानी न छड्यो पियो वञे। पानी जी शदीद खोट सबब असां जो लखे एकड़ ज़रई ज़मीनू बंजर बणजी वयूं आहिनि। पीअण जे लाइ पाणी भूं असर न आहे। माल मता उन सबब मरी रहियो आहे। ज़मीनू सुकी बंजर बणजी चुकियूं आहिनि ऐं माण्हू मजबूर थी लॾ पलाण करे रहिया आहिनि। हिननि इल्ज़ाम हयो त सिंधु हुकूमत ॼाणी वाणी बलोचिस्तान जे हिसे जो पाणी रोके रही आहे, जंहिं सबब लखे एकड़ ज़मीनू सुकी ऐं

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो उदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्योंकि मैं ग्रीन

0: که مکرینو.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: टिंडर राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंधवासियुनि जा एहतजाज ऐं हुकूमत जा एतराज़ नज़र अंदाज़। पंजाब तकरारी जलालपुर कैनाल मुकमल करे वहाए छॾियो। 1350 क्यूसिक पाणी छोड़। लेडी हेल्थ वर्कर्स जी निचकारी ऐं बजट में 75% कटौती रद्द। तहरीक जो ऐलान। सिंध जे 275,000 मुस्तहक घराणनि में मुफ़्त सोलर सिस्टम विरिहाइण ऐं लॻाए ॾियण जो हुकुम। जल्द अमल करण जूं हिदायतूं। सिंध में शागिर्दनि जी दाख़िला खे डिजिटलाइज़ करण जो फ़ैसिलो। हर शागिर्द जे लाइ मुनफ़रद दाख़िला आईटी तयार। सिंध में पेट्रोल पंपनि जी निगरानी कमिश्नर ऐं पुलिस हवाले। इजलास में फ़ैसिलो। सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सवें आबादकारनि जो पाणी खोड़ ख़िलाफ़ सखर में धरणो। पाणी चोरी नामंज़ूर ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा। सिंध में जाली दवाउनि जो मौत वारो कारोबार। 79 नमूना नाकाम। ज़िमेवार केर। पंजाब जे आपाशी खाते नओं ठहियल जलालपुर कैनाल 7 ॾींहनि जे आज़माइशी टेस्ट खातर वहाए छॾियो आहे, जितां 16 जुलाई खां 23 जुलाई ताईं पाणी खयो वेंदो। 117 किलोमीटर उन ड्रिघे कैनाल में खुशाब रसूल हेडवर्क्स वटां 1350 क्यूसिक पाणी छॾियो वियो आहे। झेलम नदीअ में मंगला डेम मां आयल उन पाणीअ खे वहाइण खां 3 ॾींहं अॻु सीजी कैनाल जी खणत वधाए 10,000 क्यूसिक कई वई ऐं सीजीअ जे मथां वरी झेलम नदीअ जे पाणी उन नए जलालपुर कैनाल खे ॾिनो वियो आहे। जलालपुर कैनाल जे नेटवर्क मां 23 डिस्ट्रीब्यूटरियूं ऐं 10 माइनर निकतल आहिनि। कैनाल जी कमांड एरिया 1,74,000 एकड़ रखी वई आहे। 117 किलोमीटर डिघो उहो कैनाल पंजाब जे झेलम ऐं खुशाब ज़िलनि जे ख़रीफ़ मुंद में ज़मीन आबाद करण जे लाइ ठाहियो वियो आहे। 4.25 लख एकड़ ज़मीन खां अलावा वधीक 10,000 एकड़ ज़मीन खे पोखे लाइ बणायो वेंदो। 2,000 एकड़नि ते जदीद आपाशी जो निज़ाम हूंदो। 18 हंधनि ते बोड खां बचाव जे लाइ बंदि हूंदा। 20 हंधनि ते पाणी गॾु करण जा तलाउ ऐं पंपिंग स्टेशन हूंदियूं। 26 हंधनि ते पीअण लाइ पाणी जा 17 आउटलेट हूंदा। 1941 एकड़नि ते ड्रिप इरीगेशन हूंदी। पंजाब जे आपाशी खाते मूजिबि उहो कैनाल रुगो खरीफ़ जी फसल जे लाइ ठाहियो वियो आहे। ॿिए पासे सिंध जे पाणी माहिर जो ख़दशो आहे त झेलम नदीअ मां उन कैनाल खे पाणी ॾियण बाद सिंधुअ जो पाणी सीजी वसीले झेलम जे कमांड वारनि हेठनि इलाइक़नि जी घुर्ज पूरी करण जे लाइ खयो वेंदो। होॾां टीपी कैनाल मां बि खणत 10,727 क्यूसिक कई वई आहे। यादि रहे त 2021 में सिंध पारां उन कैनाल जी अॾावत ते एतिराज़ वारींदे उन खे 1991 वारे पाणी ठाह जे भञकड़ी करार ॾिनो वियो। होॾां जुलाई जे 3 हफ़्ते ताईं ख़रीफ़ मुंद हूंदी। कोटड़ी जे डाउन स्ट्रीम में 100 क्यूसिक पाणी बि नाहे छॾियो वियो। आल लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन जे चेयरपर्सन बुशरा आरई चयो आहे त लेडी हेल्थ वर्कर्स जी जिदोजहद रुगो रोज़गार न पर सिंध जे आवाम जे बुनियादी सिहत जे हक़ जे तहफ़ुज़ जे लाइ आहे। काल्ह हिकड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे हुन चयो त सिंध हुकूमत जे पॉलिसियुनि सबबि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खे आहिस्ते आहिस्ते ख़तम करणु, निजी शोबे हवाले करणु, प्राइवेटाइज़ेशन या आउटसोर्सिंग ॾांहुं धिकियो पियो वञे, जेके अवामी सिहत जे लाइ इंतिहाई ख़तरनाक आहे। हुन इल्ज़ाम हयो त प्रोग्राम जे ऑपरेशनल बजट में 75% कटौती कई वई आहे, जंहिं सबब दवाउनि, तिबी सामान, निगरानी ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी फराहमी सख़्त मुतासिर थी आहे। हुन वधीक चयो त प्रोग्राम जो नालो सरकारी बजट दस्तावेज़नि मां बि ख़तम कयो वियो आहे। हुन चयो त लेडी हेल्थ वर्कर्स निज़ाम कमज़ोर थियो त बहराड़ी ऐं पुठिते पियल इलाइक़नि में माउ ऐं ॿार जी सिहत, वैक्सीनेशन, पोलियो मुहिम ऐं ॿियनि बुनियादी सिहत जी ख़िदमतुनि खे नुक़सान पहुचंदो। हुन मुतालबो कयो त ऑपरेशनल बजट में कयल 75% कटौती वापसि वठी महांगाई जे तनासुब सां बजट में वाध कई वञे। प्रोग्राम जी सुञाणप, नाले ऐं बुनियादी ढांचे खे कानूनी तहफ़ ॾिनो वञे। कंहिं बि क़िस्म जी निचकारी, आउटसोर्सिंग या इंतिज़ामी तब्दीलीअ खां अॻु लेडी हेल्थ वर्कर्स जी चूंडियल क़यादत सां मुशावरत कई वञे। हुन ख़बरदार कयो त सदन जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न कया विया त सॼी सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू कई वेंदी। आईनी ऐं कानूनी वेड़ जे लाइ सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो कयो वेंदो। सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह तवान खाते के हिदायत कई है सजे सूबे में सोलर होम सिस्टम किट्स की विरछ इंस्टॉलेशन वे कम के तेज किया काल वजीर आला हाउस में 18.206 अरब रुपये के लागत वे सोलर होम सिस्टम प्रोजेक्ट में अग भराई बाबत इजलास की सदारत कंदे वजीर आला पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हिदायतों से शुरू कल इन प्रोजेक्ट जो मकसद सजे सिंध में 2,75,000 ऑफ ग्रिड प्रोटेक्टेड ऑन ग्रिड मुस्तहक घरन के मुफ्त सोलर बिजली फराहम करना है। इजलास के बुधाये वो तवानाई खातों सालियाने तरक्याती प्रोग्राम जरिए 18.206 अरब रुपये की लागत से गरीब खानदान के सोलर होम सिस्टम ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट ते अमल कर रो है। हर मुस्तहक घर के मुकमल सोलर होम सिस्टम दिनो वो जैमें 180 वाट जो सोलर पैनल लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सेंट्रल कंट्रोल यूनिट चार्ज कंट्रोलर मोबाइल चार्जिंग की सहूलत 25 वाट जो डीसी पखो 5 वाट जो 3 LED लाइट्स शामिल हैं। उन्हें प्रोजेक्ट में 2,75,000 घरन के फायदो थींदो। इजलास के बुधाये वो तो सिंध के मुख्तलिफ़ जिलों में 15,000 का वधिक सोलर होम सिस्टम किट्स विरहायूं लगायूं वयूं हैं। अप्रैल 2025 में शुरू थियल मनसूबो जून 2027 तक मुकम्मल थियण जो इम्कान है। सिंध हुकूमत पारा सरकारी स्कूल में शागिर्दन के दाखिला वाले निज़ाम के डिजिटलाइज करण जो फैसलो हर शागिर्द के लिए मुनफरद दाखिला ID तैयार कई वी जैंखे पेफारम से गंढो वो उन हवाले से तालीम वे वजीर सरदार शाह के सदारत हेठ नादरा अख्तियार इजलास किया वो मौके से सूबाई वजीर सरदार शाह तो सिंध के स्कूल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वसत डिनी पी वे उस्तादन शागिर्दन की हाजिरी वे निज़ाम आखिरी मरहले में है। उन्हें तो हाँ हर शागिर्द जो दाखिला निज़ाम नादरा के तस्दीक से गड डिजिटल तौर से महफूज हों। सिंध के कमिश्नर पुलिस के पेट्रोल के जखीरा अंदोजी की निगरानी कार्रवाई की हिदायत उन डस में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की सदारत हेठ थियल इजलास में सूबे अंदर बारण फ्यूल जो सूरत हाल जो जायजो वरतो वो। इजलास के बुधाये वो तो सिंध के 4 जिलों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जा 34 ऑयल डिपो 30 जिलों में 2,136 पेट्रोल पंप रिटेल आउट आन। ओगरा कराची पारा तेल के जखीरा अंदोजी रोकण के लिए खसूसी इंस्पेक्शन टीमू जोड़ियों वयू आन। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर पुलिस अख्तियार के ओगरा की इंस्पेक्शन टीम से सहकार की हिदायत कंदे चयो तो कें भी जिले में तेल की हथरादू खोट या जखीरा अंदोजी बर्दाश्त न कबी। उन कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर पुलिस अख्तियार के तेल सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग रोजानो बुनियाद रिपोर्टिंग जो हुक्म दिनो। उन हिदायत कई तो समूरन ऑयल डिपोन पेट्रोल पंपन ते मौजूद स्टॉक की बाकायदगी से निगरानी कई वे ओगरा ऑयल कंपनियों तोड़े जिले इंतजामिया के विच में राबतो कायम रखो वे तो जी तेल सप्लाई में का भी रुकावट पेश न अचे। बलोचिस्तान सिंध के साजे पासे का कीर्थर केनाल के पानी दियो सभी जमींदार आबादगार उस्ता मोहम्मद खान रैली की सूरत में सखर पहुंची वा। एहतजाजी मुजाहरे बाद धरणो पुलिस खेन ग्लोब चौक वट रोके वरतो। राइट बैंक केनाल खीरथर में पानी की शदीद खोट खिलाफ सिंध बलोचिस्तान हारी जमींदार इतिहाद के अगवाण मीर हसन खान शैलानी बिन की अगवाणी में सवे जमींदार आबादगार सखर बिरार से धरणो हणण के लिए पहुंची वह। सखर पुलिस खेन ग्लोब चौक वट रोके वरतो जिते आबादगार धरणो हणी वेही रहा। एहतजाज दौरान ट्रैफिक की अचवंज मौतुल थी वही। आबादगार पांजे हकन के लिए जोरदार नारेबाजी कई। उन मौके से अगवाण चो तो सखर बेरार से पानी मौजूद होजन बावजूद खीरथर केनाल दादू केनाल में पानी न छोड़ पो वे। पानी की शदीद खोड़ सबब असाज लखे एकड़ जरई जमीनू बंजर बनजी व्यू आन। पीण के लिए पानी भी मुयसर न है। माल मता उन सबब मरी रो है। जमीनू सुकी बंजर बनजी चुकियो मू मजबूर थी लड़ पलाण कर रहा है। इन इल्जाम है तो सिंध हुकूमत जानी वाणी बलोचिस्तान के हिस्से जो पानी रोके रही है जै सबब लखे एकड़ जमीनू सुकी गेराबाद थी व्यू आन। अगवाणन खबरदार किया तो जैसे सदन जायज मुतालबा मंजूर न कया वह तो धरणो खत्म न किया वो जैसी तीन खेन पांजे हिस्से जो पानी न मिलों तेसी तीन एहतजाज जारी रह। बलोचिस्तान के सूबाई वजीर शादी खान उमरानी मोहम्मद खान लहड़ी सलीम खान खोसो सखर में आबादगार के धरणे में पहुंची साणन गाल खातरी कराई तिन डी अंदर सदन पानी जो मसलो हल किया वो। उन सवाई चीफ इंजीनियर गुडू बेराज सैद सरदार शाह
1: असिस्टेंट कमिश्नर मैडम बुशरा मंसूर पिण आबादकारनि खे खातिरी कराइण जी कोशिश कई त ॿिनि ॾींहनि अंदरि संदन पाणीअ जो मसलो हल कयो वेंदो, पर आबादकारनि कामोरनि ऐं बलोचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि खे खुतो जवाब ॾिनो ऐं चयो त जेसीं ताईं संदन मसलो हल न कयो वेंदो तेसीं ताईं धरणो जारी रहंदो।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी पारां मुख़्तलिफ़ एलोपैथिक हर्बल दवाउनि ऐं सिरंजुनि जा 79 नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार ॾियण खां पोइ सूबे में दवाउनि जे मयार ऐं सिहत वारे निज़ाम बाबति गणती वधी वई आहे। माहिरनि जो चवण आहे त हीउ रुगो चंद दवाउनि जो मसलो न आहे पर सिहत जी निगरानीअ वारे निज़ाम ते हिकु वॾो सवाल आहे। रिपोर्ट मूजिब असल मामिलो रुगो गैर मयारी दवाउनि जी निशानदही न पर उहो आहे त उहे दवाउं मार्केट ताईं कीअं पहुतियूं, उन्हनि खे तयार कंदड़ कंपनियुनि खे इजाज़त कंहिं ॾिनी ऐं लाॻापियल इदारनि तरफ़ां वक़्त सिर कार्रवाई छो न कई वई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ज़िलनि में जाली ऐं गैर मयारी दवाउनि जे विकिरे बाबति अॻु बि शिकायतूं साम्हूं ईंदियूं रहियूं आहिनि। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल हल्कनि जो चवण आहे त जेकॾहिं निगरानीअ जो निज़ाम मौसर हुजे त अहिड़ियूं दवाऊं मार्केट ताईं पहुची न सघंदियूं। माहिरनि मूजिब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ऐं सिंध जे सिहत खाते जी ज़िमेवारी आहे त दवा साज़ कंपनियुनि, मेडिकल स्टोरनि ऐं सप्लाई चेन जी सख़्त निगरानी कनि जीअं अवाम ताईं महफ़ूज़ ऐं मयारी दवाऊं पहुचनि। ॿिए तरफ़ सिहत जे शोबे में उहो बि बहस जारी आहे त कुझु दवा साज़ कंपनियुनि ऐं मेडिकल स्टोरनि ख़िलाफ़ मालीअ में बि कार्रवायूं थियूं पर मुस्तक़िल ऐं असराइती निगरानी न थियण सबबि मसलो ख़तम न थी सघियो। कुझु माहिरनि जो ख़्यालु आहे त जेकॾहिं ज़ाब्तनि ते सख़्तीअ सां अमल थिए ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ बिना इम्तियाज़ कार्रवाई कई वञे त जाली दवाउनि जो कारोबार ते ज़ाब्तो आणे सघिजे थो। सिहत जे माहिरनि जो उहो बि चवणु आहे त जाली या गैर मयारी दवाउनि जो सभ खां वॾो नुक़सानु आम मरीज़ खे थिए थो, जेको इलाज जी उमेद सां दवा ख़रीद करे थो पर खेन घुर्बल फ़ाइदो नथो मिले ऐं कॾहिं कॾहिं संदनि सिहत खे वधीक ख़तरो बि पैदा थी सघे थो। हाणे अवाम ऐं सिहत सां लाॻापियल हल्का मुतालबो करे रहिया आहिनि त ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जी रिपोर्ट जे बुनियाद ते जाली ऐं गैर मयारी दवाऊं ठाहींदड़ कंपनियुनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, ज़िमेवार आफ़ीसरनि ऐं लाॻापियल अमले जे एहतसाब कयो वञे, गैर मयारी दवाऊं विकिरो कंदड़ मेडिकल स्टोरनि ख़िलाफ़ सख़्त कदम खया वञनि, सूबे में दवाउनि जे मयार जी निगरानीअ जो निज़ाम वधीक मज़बूत बणायो वञे। सिहत जे शोबे जे माहिरनि जो उहो बि चवणु आहे त जेकॾहिं रिपोर्टुनि ताईं ई कार्रवाई महदूद रही ऐं ज़िमेवारनि खे कानून जे कचहरे में न आंदो वियो त अवाम जो सिहत वारो निज़ाम ते एतमाद वधीक मुतासिर थींदो। एहत जी अहम ज़रूरत करार ॾिनो पियो वञे। हीउ हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो। जिस धरती

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: स्लोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

टिंडर राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध वासिन जा एहतजाज ऐं हुकूमत जा एतराज नज़र अंदाज पंजाब तकरारी जलालपुर कैनाल मुकम्मल करे वहाए छॾियो 1350 क्यूसिक पाणी छोड़ लेडी हेल्थ वर्कर्स जी निचकारी ऐं बजट में 75% कटौती रद्द तहरीक जो ऐलान सिंध जे 275,000 मुस्तहक घराणनि में मुफ़्त सोलर सिस्टम विरिहाइण ऐं लॻाए ॾियण जो हुकुम जल्द अमल करण जूं हिदायतूं सिंध में शागिर्दनि जी दाख़िला खे डिजिटलाइज करण जो फ़ैसिलो हर शागिर्द जे लाइ मुनफ़रद दाख़िला आईटी तयारु सिंध में पेट्रोल पंपनि जी निगरानी कमिश्नर ऐं पुलिस हवाले इजलास में फ़ैसिलो सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सवें आबादगारनि जो पाणी खोड़ ख़िलाफ़ सखर में धरणो पाणी चोरी नामंज़ूर ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध में जाली दवाउनि जो मौत वारो कारोबार 79 नमूना नाकाम ज़िमेवार केर पंजाब जे आपाशी खाते नओं ठहियल जलालपुर केनाल 7 ॾींहनि जे आज़माइशी टेस्ट खातर वहाए छॾियो आहे जितां 16 जुलाई खां 23 जुलाई ताईं पाणी खयो वेंदो 117 किलोमीटर उन डिघे केनाल में खुशाब रसूल हेडवर्क्स वटां 1350 क्यूसिक पाणी छॾियो वियो आहे जहलम नदीअ में मंगला डेम मां आयल उन पाणीअ खे वहाइण खां 3 ॾींहं अॻु सीजी केनाल जी खणत वधाए 10,000 क्यूसिक कई वई ऐं सीजीअ जे मथां वरी जहलम नदीअ जे पाणी उन नए जलालपुर केनाल खे ॾिनो वियो आहे जलालपुर केनाल जे नेटवर्क मां 23 डिस्ट्रीब्यूटरियूं ऐं 10 माइनर निकल आहिनि केनाल जी कमांड एरिया 1,74,000 एकड़ रखी वई आहे 117 किलोमीटर डिघो उहो केनाल पंजाब जे जहलम ऐं खोशाब ज़िलनि जे ख़रीफ़ मुंद में ज़मीन आबाद करण जे लाइ ठाहियो वियो आहे 0.25 लख एकड़ ज़मीन खां अलावा वधीक 10,000 एकड़ ज़मीन खे पोखे लाइ बणायो वेंदो 2,000 एकड़नि ते जदीद आपाशी जो निज़ाम हूंदो 18 हंधनि ते बोड खां बचाव जे लाइ बंदि हूंदा 20 हंधनि ते पाणी गॾु करण जा तलाव ऐं पंपिंग स्टेशन हूंदियूं 26 हंधनि ते पीअण लाइ पाणी जा 17 आउटलेट हूंदा 1941 एकड़नि ते ड्रिप इरीगेशन हूंदी पंजाब जे आपाशी खाते मूजिब उहो केनाल रुगो खरीफ़ जी फसल जे लाइ ठाहियो वियो आहे ॿिए पासे सिंध जे पाणी माहिर जो ख़दशो आहे त जहलम नदीअ मां उन केनाल खे पाणी ॾियण बाद सिंधुअ जो पाणी सीजी वसीले जहलम जे कमांड वारनि हेठनि इलाइक़नि जी घुर्ज पूरी करण जे लाइ खयो वेंदो होॾां टीपी केनाल मां बि खणत 10,727 क्यूसिक कई वई आहे यादि रहे त 2021 में सिंध पारां उन केनाल जी अदावत एतिराज़ वारींदे उन खे 1991 वारे पाणी ठाह जे भञकड़ी करार ॾिनो वियो होॾां जुलाई जे 3 हफ़्ते ताईं ख़रीफ़ मुंद हूंदी कोटड़ी जे डाउन स्ट्रीम में 100 क्यूसिक पाणी बि नाहे छॾियो वियो आल लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन जे चेयरपर्सन बुशरा आरई चयो आहे त लेडी हेल्थ वर्कर्स जी जिदोजहद रुगो रोज़गार न पर सिंध जे आवाम जे बुनियादी सिहत जे हक़ जे तहफ़ जे लाइ आहे काल्ह हिकड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे हुन चयो त सिंध हुकूमत जे पॉलिसियुनि सबबि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खे आहिस्ते आहिस्ते ख़तम करणु निजी शोबे हवाले करणु प्राइवेटाइज़ेशन या आउटसोर्सिंग ॾांहुं धिकियो पियो वञे जेके अवामी सिहत जे लाइ इंतिहाई ख़तरनाक आहे हुन इल्ज़ाम हयो त प्रोग्राम जे ऑपरेशनल बजट में 75% कटौती कई वई आहे जंहिं सबबि दवाउनि तिबी सामान निगरानी ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी फराहमी सख़्त मुतासिर थी आहे हुन वधीक चयो त प्रोग्राम जो नालो सरकारी बजट दस्तावेज़नि मां बि ख़तम कयो वियो आहे हुन चयो त लेडी हेल्थ वर्कर्स निज़ाम कमज़ोर थियो त बहराड़ी ऐं पुठिते पियल इलाइक़नि में माउ ऐं ॿार जी सिहत वैक्सीनेशन पोलियो मुहिम ऐं ॿियनि बुनियादी सिहत जी ख़िदमतुनि खे नुक़सान पहुचंदो हुन मुतालबो कयो त ऑपरेशनल बजट में कयल 75% कटौती वापसि वठी महांगाई जे तनासुब सां बजट में वाध कई वञे प्रोग्राम जी सुञाणप नाले ऐं बुनियादी ढांचे खे कानूनी तहफ़ ॾिनो वञे कंहिं बि क़िस्म जी निचकारी आउटसोर्सिंग या इंतिज़ामी तब्दीलीअ खां अॻु लेडी हेल्थ वर्कर्स जी चूंडियल क़यादत सां मुशावरत कई वञे हुन ख़बरदार कयो त सदन जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न कया विया त सॼी सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू कई वेंदी आईनी ऐं कानूनी वेड़ जे लाइ सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो कयो वेंदो
सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह तवान खाते के हिदायत कई है सजे सूबे में सोलर होम सिस्टम किट्स की विरछ इंस्टॉलेशन वे कम के तेज किया वे कल वजीर आला हाउस में 18.206 अरब रुपये के लागत वे सोलर होम सिस्टम प्रोजेक्ट में अग भराई बाबत इजलास की सदारत कदे वजीर आला पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हिदायतों से शुरू कल प्रोजेक्ट जो मकसद सजे सिंध में 2,75,000 ऑफ ग्रिड प्रोटेक्टेड ऑन ग्रिड मुस्तहक घरन के मुफ्त सोलर बिजली फराहम करण है। इजलास के बुधाया वो तवानाई खातो सालियाने तरक्याती प्रोग्राम जरिए 18.206 अरब रुपये की लागत से गरीब खानदान के लिए सोलर होम सिस्टम ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट से अमल कर रो है। हर मुस्तहक घर के मुकमल सोलर होम सिस्टम दिनों वो जैमें 180 वाट जो सोलर पैनल लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सेंट्रल कंट्रोल यूनिट चार्ज कंट्रोलर मोबाइल चार्जिंग की सहूलत 25 वाट जो डीसी पखो 5 वाट जो 3 LED लाइट्स शामिल हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट में 2,75,000 घरन के फायदो थींदो। इजलास के बुधाया वो तो सिंध के मुख्तलिफ जिलों में 15,000 का वधिक सोलर होम सिस्टम किट्स विरहायूं लगाई वही हैं। अप्रैल 2025 में शुरू थियल मनसूबो जून 2027 तक मुकम्मल थियण जो इम्कान है। सिंध हुकूमत पारा सरकारी स्कूलों में शागिदन के दाखिला वाले निजाम के डिजिटलाइज करण जो फैसलो हर शागिद के लिए मुनफरद दाखिला ID तैयार कई वी जैसे बेफारम से गंढो वो उन हवाले से तालीम वे वजीर सरदार शाह के सदारत हेठ नादरा अख्तियार से इजलास किया वो। मौके से सूबाई वजीर सरदार शाह सिंध के स्कूलों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वसत डी पी वे उस्तादन शागिदन की हाजिरी वे निजाम आखिरी मरहले में है। उन हाँ हर शागिद जो दाखिला निजाम नादरा के तस्दीक से गड डिजिटल तौर से महफूज हों। सिंध के कमिश्नर पुलिस के पेट्रोल के जखीरा आंदोजी की निगरानी कार्रवाई की हिदायत उन डस में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह के सदारत हेठ थियल इजलास में सूबे अंदर बारण फ्यूल जो सूरत हाल जो जायजो वरतो वो। इजलास के बुधा वो तो सिंध के 4 जिलों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जा 34 ऑयल डिपो 30 जिलों में 2,136 पेट्रोल पंप रिटेल आउट आन। ओगरा कराची पारा तेल के जखीरा आंदोजी रोकने के लिए खसूसी इंस्पेक्शन टीमों जोड़ी वही हैं। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर पुलिस अख्तियार के ओगरा की इंस्पेक्शन टीम से सहकार की हिदायत कदे तो कें भी जिले में तेल की हथरादू खोट या जखीरा आंदोजी बर्दाश्त न कबी। उन कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर पुलिस अख्तियार के तेल सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग रोजानो बुनियाद रिपोर्टिंग जो हुक्म दिनो। उन हिदायत कई तो समूरन ऑयल डिपो पेट्रोल पंपन से मौजूद स्टॉक की बाकायदगी से निगरानी कई वे ओगरा ऑयल कंपनियों तोड़े जिले इंतजामिया के विच में राबतो कायम रखो वे तो जी तेल सप्लाई में का भी रुकावट पेश न अचे। बलोचिस्तान सिंध के साजे पासे का कीर्थर केनाल के पानी दियो सवे जमींदार आबादगार उस्ता मोहम्मद खान रैली की सूरत में सखर पहुंची वा। एहतजाजी मुजाहरे बाद धरणू पुलिस खेन ग्लोब चौक वट रोके वरतो। नाल खीरथर में पानी खिलाफ सिंध बलोचिस्तान हारी जमींदार इतिहाद के अगवाण मीर हसन खान शैलानी बेन की अगवाणी में सवे जमींदार आबादगार सखर बिरार से धरणू हण के पहुंची वह। सखर पुलिस खेन ग्लोब चौक वट रोके वरतो जिते आबादगार धरणू हणी वेही रहा। एहतजाज दौरान ट्रैफिक की अचवंज मौतुल थी वही। आबादगार पांजे हकन के लिए जोरदार नारेबाजी कई। उन मौके से अगवाण चो तो सखर बैराज से पानी मौजूद होजन बावजूद खीरथर केनाल दादू केनाल में पानी न छो पो वे। पानी की शदीद खोट सबब असाजू लखें एकड़ जरई जमीनू बंजर बनजी व्यू आन। पीण के लिए पानी भी मुयसर न है। माल मता उन सबब मरी रो है। जमीनू सुकी बंजर बनजी चुकू हैं। मानू मजबूर थी लड पलाण कर रहा है। इन इल्जाम हों तो सिंध हुकूमत जानी वाणी बलोचिस्तान के हिस्से जो पानी रोके रही है जै सबब लखें एकड़ जमीनू सुकी गेराबाद थी व्यू आन। अगवाण खबरदार किया तो जैसे संदन जायज मुतालबा मंजूर न क्या वह तो धरणू खत्म न किया वो। जैसी तई खेन पांजे हिस्से जो पानी न मिलो तेसी तई एहतजाज जारी रह। बलोचिस्तान के सूबाई वजीर शादी खान उमरानी मोहम्मद खान लहड़ी सलीम खान खोसो सखर में आबादगार के धरणे में पहुंची साणन गाल खातरी कराई तिन डी अंदर संदन पानी जो मसलो हल किया वो। उन सवाई चीफ इंजीनियर गुडू बैराज सैद सरदार शाह
असिस्टेंट कमिश्नर मैडम बुशरा मंसूर पिण आबादकारनि खे खातिरी कराइण जी कोशिश कई त ॿिनि ॾींहनि अंदरि संदन पाणीअ जो मसलो हल कयो वेंदो, पर आबादकारनि कामोरनि ऐं बलोचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि खे खुतो जवाब ॾिनो ऐं चयो त जेसीं ताईं संदन मसलो हल न कयो वेंदो तेसीं ताईं धरणो जारी रहंदो।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी पारां मुख़्तलिफ़ एलोपैथिक हर्बल दवाउनि ऐं सिरंजुनि जा 79 नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार ॾियण खां पोइ सूबे में दवाउनि जे मयार ऐं सिहत वारे निज़ाम बाबति गणती वधी वई आहे। माहिरनि जो चवण आहे त हीउ रुगो चंद दवाउनि जो मसलो न आहे पर सिहत जी निगरानी वारे निज़ाम ते हिकु वॾो सवाल आहे। रिपोर्ट मूजिबि असल मामिलो रुगो गैर मयारी दवाउनि जी निशानदही न पर उहो आहे त उहे दवाउं मार्केट ताईं कीअं पहुतियूं, उन्हनि खे तयारु कंदड़ कंपनियुनि खे इजाज़त कंहिं ॾिनी ऐं लाॻापियल इदारनि तर्फ़ां वक़्त सिर कार्रवाई छो न कई वई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ज़िलनि में जाली ऐं गैर मयारी दवाउनि जे विकिरे बाबति अॻु बि शिकायतूं साम्हूं ईंदियूं रहियूं आहिनि। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल हल्कनि जो चवण आहे त जेकॾहिं निगरानीअ जो निज़ाम मौसर हुजे त अहिड़ियूं दवाऊं मार्केट ताईं पहुची न सघंदियूं। माहिरनि मूजिबि ड्रग रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ऐं सिंध जे सिहत खाते जी ज़िमेवारी आहे त दवा साज़ कंपनियुनि, मेडिकल स्टोरनि ऐं सप्लाई चेन जी सख़्त निगरानी कनि, जीअं अवाम ताईं महफ़ूज़ ऐं मयारी दवाऊं पहुचनि। ॿिए तरफ़ सिहत जे शोबे में उहो बि बहस जारी आहे त कुझु दवा साज़ कंपनियुनि ऐं मेडिकल स्टोरनि ख़िलाफ़ मालीअ में बि कार्रवायूं थियूं पर मुस्तक़िल ऐं असराइती निगरानी न थियण सबबि मसलो ख़तम न थी सघियो। कुझु माहिरनि जो ख़्याल आहे त जेकॾहिं ज़ाब्तनि ते सख़्तीअ सां अमल थिए ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ बिना इम्तियाज़ कार्रवाई कई वञे त जाली दवाउनि जो कारोबार ते ज़ाब्तो आणे सघिजे थो। सिहत जे माहिरनि जो उहो बि चवणु आहे त जाली या गैर मयारी दवाउनि जो सभ खां वॾो नुक़सान आम मरीज़ खे थिए थो, जेको इलाज जी उमेद सां दवा ख़रीद करे थो पर खेन घुर्बल फ़ाइदो नथो मिले ऐं कॾहिं कॾहिं संदनि सिहत खे वधीक ख़तरो बि पैदा थी सघे थो। हाणे अवाम ऐं सिहत सां लाॻापियल हल्का मुतालबो करे रहिया आहिनि त ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जी रिपोर्ट जे बुनियाद ते जाली ऐं गैर मयारी दवाऊं ठाहींदड़ कंपनियुनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, ज़िमेवार आफ़ीसरनि ऐं लाॻापियल अमले जे एहतसाब कयो वञे, गैर मयारी दवाऊं विकिरो कंदड़ मेडिकल स्टोरनि ख़िलाफ़ सख़्त कदम खयां वञनि, सूबे में दवाउनि जे मयार जी निगरानीअ जो निज़ाम वधीक मज़बूत बणायो वञे। सिहत जे शोबे जे माहिरनि जो उहो बि चवणु आहे त जेकॾहिं रिपोर्टुनि ताईं ई कार्रवाई महदूद रही ऐं ज़िमेवारनि खे कानून जे आंदो वारो निज़ाम ते एतमाद वधीक मुतासिर थींदो। सिंध में महफ़ूज़ मयारी ऐं मौसर दवाउनि जी फराहमी यकीनी बनाइण जे लाइ शफ़ाफ़ एहतसाब ऐं सख़्त निगरानीअ खे वक़्त जी